0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल उज्जैन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मिशन बुनियाद परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नवनियुक्त प्राथमिक शाला शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। प्रदेश के 68 शासकीय महाविद्यालयों में AI और फिनटेक विद AI के ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इनमें 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और 13 स्वशासी महाविद्यालय शामिल हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में इस निःशुल्क कोर्स के जरिए 2000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून टर्फ समेत दो सिस्टम सक्रिय होने से आज प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के बाकी जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने का अनुमान है। और हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में शुभारंभ हुआ। इस टूर्नामेंट में देश की जूनियर पुरुष हॉकी टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो 8 अगस्त तक विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगी और राष्ट्रीय चैंपियन का फैसला करेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 11 बजे हैं। आप सुनिए फोन इन कार्यक्रम, बात आपकी गीत हमारे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फोन इन कार्यक्रम, बात आपकी गीत हमारे। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आप सूरज को ढलने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप रात को अंधेरे में एक दिया जरूर जला सकते हैं। जीवन का एक सीधा सा नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि आप अपने दिमाग में संशय, डर और निराशा के बीज बोएंगे तो सफलता का पौधा कभी नहीं पनपेगा। अपने विचारों को बदलने की शुरुआत आज से नहीं, अभी से कीजिए। अपनी सोच को बदलिए, आपका नज़रिया बदलेगा, और जब नज़रिया बदलेगा तो आपकी दुनिया आप अपने आप बदल सकते हैं, और बदलाव की शुरुआत खुद से ही होती है। तो याद रखिए, कहते हैं ना कि चैरिटी बिगेंस एट होम। ऐसी ही एक बदलाव, ऐसी ही एक शुरुआत आज हम कर रहे हैं। कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात है कि वाहन चलाते वक्त आप कौन कौन सी सावधानियां रखते हैं। चलिए शुरुआत कर रहे हैं हमारे पहले श्रोता से। जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि वो आज के इस विषय को लेकर कितने जागरूक हैं। हाँ जी, नमस्कार।
2: हाँ जी
1: जी, अपना परिचय दीजिए।
2: जी, करेली से मोहन कहार बोल रहा हूँ।
1: करेली से
2: मोहन कहार।
1: मोहन कहार जी।
2: हाँ जी, हाँ जी, मोहन कहार बोल रहा हूँ करेली से।
1: जी, क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, काम क्या करते हैं आप?
2: जी, टीचर हो।
1: अच्छा जी जी, तो आज हम बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम कर रहे हैं, और आज हमारी बात का विषय जो हमने रखा हुआ है वो ये है कि जब आप वाहन चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं?
2: नहीं, अभी तो हम रेडियो कार्यक्रम सुन रहे हैं, उसमें तो ये ऐसा कुछ नहीं है।
1: नहीं नहीं, आप गाड़ी चलाते वक्त कौन कौन सी सावधानियाँ बरतते हैं या किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, आप इस विषय पर कुछ बोलना चाहेंगे?
2: गाड़ी चलाते समय हमें हेलमेट पहनना चाहिए, हमेशा बाएं तरफ गाड़ी चलाना चाहिए, और गाड़ी धीमी चलाना चाहिए। ये सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए।
1: वाहन धीरे चलाना चाहिए, वाहन की गति नियंत्रित होनी चाहिए, और हेलमेट पहनना चाहिए। अगर आप चौपहिया वाहन चला रहे हैं, फोर व्हीलर चला रहे हैं, तो सीट बेल्ट का उपयोग करना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान आप रखते हैं, ऐसा आप बता रहे हैं।
2: जी
1: जी, तो आप चाहते हैं कि अपने परिवार के सभी सदस्य जो वाहन चलाते हैं वो इन बातों का ध्यान रखें, इन बातों का पालन करें।

0: जी
1: ये बातें न केवल स्वयं की सुरक्षा के लिए बल्कि हमारे आस पड़ोस में चलने वालों की जिंदगी का भी बचाव कर सकती हैं।
0: जी
1: आपने फ़ोन
0: सर,
1: किया, इसके लिए
0: बच्चों का
1: बहुत बहुत
0: ध्यान बहुत
1: धन्यवाद।
0: जरूरी है।
1: नमस्कार।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार। हेलो,
1: हेलो,
0: आपकी आवाज़ हम तक आ रही है, अपना परिचय
1: आपको आ रही
0: दीजिए।
1: है?
0: जी हाँ, परिचय दीजिए।
1: हातेगांव से बोल रहा था, गोविंद जलोदिया,
0: गोविंद जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हातेगांव से।
0: अच्छा जी, खातेगांव से। ये कहाँ पड़ता है जी?
1: ये खातेगांव पड़ता है, मतलब हर नेमावर से 15 किलोमीटर।
0: अच्छा जी, क्या करते हैं गोविंद जी?
1: मैं अभी तो कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं वैसे ही हूँ,
0: अच्छा
1: रिटायरमेंट टाइप है।
0: अच्छा, गाड़ी चलाते हैं,
1: गाड़ी
0: मोटरसाइकिल?
1: नहीं, वो तो मैं अपने मतलब चला सकता हूँ वैसे तो।
0: आपके परिवार में कोई और कोई सदस्य अगर गाड़ी चलाता हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बता सकते हैं?
1: हाँ, तो गाड़ी चलाते समय क्या मोटरसाइकिल का मेरे पास लाइसेंस भी है, 4 व्हीलर भी है। हाँ, और जो है मैंने अभी रिन्यू भी करवा लिया है। सबसे पहले तो एक नंबर में ये रहेगा कि गाड़ी की जो जगह रहेगी वहीं खड़ी कर दो, और दूसरा नंबर ये है कि दो से मतलब यानी तीन मत बिठाओ,
0: अच्छा जी।
1: ये उसका नेम भी है। और हमेशा चलते रहे, साइड साइड देख के चलो, हाथ बताओ,
0: अच्छा
1: और
0: जी।
1: हमेशा पीछे कांच में देखते रहो। हाँ,
0: गाड़ी चलाते वक्त इन बातों का ध्यान रखें कि
1: ध्यान देना चाहिए। हाँ,
0: जब भी आप गाड़ी को लेकर सड़क पर चलें तो केवल सामने की ओर ही ध्यान न रखें, पीछे से आने
1: इधर
0: वाले
1: उधर नहीं
0: वाहन
1: देखो।
0: की अगर आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, पीछे वाला व्यक्ति अगर हॉर्न बजा रहा है ना, तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। वाहन चलाते समय आपको चारों दिशाओं में अपना ध्यान बना के रखना है, सड़क पर पूरा ध्यान केंद्रित करके चलना है।
1: हाँ, दाएं बाएं और सामने भी देखो।
0: जी, आपने अच्छी बातों की ओर इशारा किया कि केवल सामने ही ना देखें, पीछे से आने वाले वाहनों पर भी आपकी नज़र बनी रहे, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, आपने हमसे बात की, हमें अच्छा लगा। आपको एक गीत सुनवाते हैं। नमस्कार।
1: ठीक, धन्यवाद।

0: हाँ जी नमस्कार
1: नमस्कार,
0: जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं ज्योति बात कर रही हूँ भोपाल से।
0: कैसे हैं जी?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? अभी
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं। बताइए इन दिनों क्या चल रहा है?
1: तो नाश्ता चल रहा है, बाकी
0: चलिए
1: गर्मी और बारिश के मजे लिए जा रहे हैं। और क्या,
0: चलिए, इस मौसम में वाहन चलाते वक्त आप कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं, यही हमने आज की बात का विषय रखा है।
1: अच्छा, सावधानियां तो सर ये कि हेलमेट लगा के जाते हैं, बारिश अगर हो रही है तो हेलमेट अगर रहेगा तो मतलब सावधानी, मुझे लगता है कि हेलमेट से हम बहुत सेफ रहते हैं। इसके अलावा रेनकोट हम लोग गाड़ी में रखते ही हैं, बस यही सब सावधानियां रखते हैं। और क्या,
0: बारिश के दिनों में फिसलने का अंदेशा ज़्यादा रहता है, तो गाड़ी को थोड़ा अतिरिक्त
1: हाँ।
0: सावधानी के
1: और
0: साथ में चल।
1: अभी दरअसल भोपाल में क्या कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है तो पूरे लगभग रोड तो थोड़े खराब ही हो रहे हैं,
0: जी
1: और
0: जी
1: बारिश में तो ये सब जगह ही रहता है, कहीं
0: जी हाँ जी हाँ
1: पानी
0: जी
1: भरा जाता है, कहीं मिट्टी विट्टी रहती तो फिसलने का भी डर रहता है ऐसा।
0: तो इस मौसम में गाड़ी चलाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं अगर पानी भरा हुआ है तो हम धीमी गति से अगर गाड़ी चलाएंगे तो हो सकता है कि हमारे

0: वाहन का संतुलन ना बिगड़े, लेकिन अगर अगर हम
1: हाँ
0: तेज़ गति से या बहुत स्पीड से अगर गाड़ी चलाते हैं तो उस गड्ढे से पानी तो उछलता है, पानी उछल के आसपास में चलने वाले राहगीरों पानी पड़ता है, तो वो एक अच्छी
1: जी
0: बात नहीं है। और एक सावधानी तो ये हो ही जाती है कि अगर वाहन धीमी गति में है तो वो उस पर
1: जी
0: नियंत्रण पाना बड़ा आसान रहता है।
1: सर, मुझे ऐसा लगता है कि धीमी गति में तो गाड़ी हमको वैसे भी मतलब इतनी स्पीड तो रखनी चाहिए जिसमें बस हमारी गाड़ी कंट्रोल हो सके। किसी
0: जी,
1: भी सीजन में हमको इतनी स्पीड में गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है,
0: बिल्कुल। और
1: क्योंकि थोड़ी देर से हम पहुंचे लेकिन सुरक्षित पहुंचे, मुझे ऐसा लगता
0: जी, हमने एक विश्लेषण पढ़ा था कहीं कि लोग बहुत तीव्र गति से अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय हम नहीं बचा पाते हैं,
1: जी।
0: मुश्किल से बमुश्किल 10 या 15 मिनट का ही अंतर आ पाता है। तो 10 या 15 मिनट बचाने के खातिर आप अपनी जान को दांव पर तो नहीं लगा सकते हैं ना।
1: बिल्कुल सही बात
0: और
1: है। जी
0: सड़क पर अगर आप तीव्र गति से गाड़ी चला रहे हैं, अनियंत्रित गति से गाड़ी चला रहे हैं, लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, तो केवल ये आपका ही नुकसान होने का अंदेशा नहीं होता है,
1: आपका
0: आशंका,
1: परिवार भी सफर
0: जी,
1: करता है। जी
0: इस आशंका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आपकी इस लापरवाही की सज़ा आपके साथ चलने वाले, आपकी सड़क पर चलने वाले लोगों को भी इसका
1: बिल्कुल
0: खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ज्योति जी, आपने फ़ोन किया, हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। एक गीत हम आपको सुनवाना
1: मुझे
0: चाहेंगे।
1: भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करकर। आकाशवाणी का धन्यवाद, आकाशवाणी के पूरे परिवार का धन्यवाद। हम बहुत प्रोग्राम वगैरह सुनते हैं, आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं सालों से ही।
0: चलिए, इसी तरह जुड़े रहिए। फिलहाल एक गीत,
1: जी
0: आपकी नज़र।

0: हेलो। हाँ जी
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर जी। मैं दीपक सिंह गुर्जर बात कर रहा हूँ, ग्राम खकल, तहसील कौच, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। जी
0: दीपक जी बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के जालौन से।
1: सर।
0: अच्छा जी, कैसे हैं दीपक सिंह जी?
1: सर मैं बहुत अच्छा हूँ और पूर्ण विश्वास और उम्मीद के साथ आप भी बहुत अच्छे होंगे।
0: हम तो बहुत बढ़िया हैं। बताइए, आज हम बात कर रहे हैं बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम के लिए,
1: जी
0: और हमारी आज की बात का विषय है कि सड़क पर जब आप वाहन चलाते हैं तो किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं?
1: देखिए सर, सड़क पर जब हम वाहन चलाते हैं, अगर हम टू व्हीलर से चल रहे हैं तो हमें पूरे तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए और हेलमेट लगाना चाहिए और दो लोगों को ही सफ़र करना चाहिए। और रास्ते पर हमें कहीं अगर दाएं बाएं मुड़ना है तो हमें सबसे पहले देख लेना चाहिए कि हमारे पीछे कोई दूसरा वाहन तो नहीं आ रहा है। और अगर फोर व्हीलर से चल रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए
0: बिल्कुल सही बात। और
1: और हमें
0: इसमें
1: बड़ी
0: कोई जी
1: और ड्रिंक ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
0: मतलब नशा कर किसी भी प्रकार का नशा करने के बाद वाहन नहीं चलाना चाहिए।
1: जी सर।
0: ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमसे साझा की है।
1: जी सर।
0: चलिए, इसी बात पर हम एक गीत आपको सुनवा रहे हैं।
1: जी, धन्यवाद सर। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार।
1: हेलो,
0: आपकी आवाज़ हम तक आ रही है?
1: आप कौन बोल रहे साहब?
0: जी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से शिवम बोल रहा
1: साहब
0: हूँ।
1: मैं इतनी बार फोन लगाती हूँ, मेरा कभी भी फोन नहीं लगता एमएच हॉटलाइन में। ऐसा ऐसा ऐसा क्या हो जाता साहब?
0: आज तो लग गया है जी हमारी तरफ से। हम फ़ोन लाइन तो खोल के रखते हैं लेकिन फ़ोन नहीं लग पाता। ये शायद किसी और वजह से होता होगा।
1: जी हम रतलाम डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। मतलब मैंने कितनी बार ट्राई करी, कितनी बार ट्राई करी भाई साहब, पर मेरा क्यों नहीं लगता है।
0: जी, बताइए, अपना परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम है सरला चौहान और मैं रतलाम डिस्ट्रिक्ट ताल आलोट आलोट जी।
0: सरला जी,
1: हाँ
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी हाँ मैं आलोट आलोट तहसील रतलाम डिस्ट्रिक्ट।
0: आलोट से बोल रही हैं। परिवार के सदस्य गाड़ी चलाते हैं तो किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? आप अगर इस विषय पर कुछ बताना चाहें तो बताएं।
1: जी हाँ बताऊंगी ना साहब, गाड़ी हमेशा नियम से बाएं हाथ पे चलाना चाहिए और धीमी गति में चलाना चाहिए और सभी का ध्यान रखना चाहिए। जी
0: और
1: हाँ, और सभी नियमों का पालन करना चाहिए। जो ट्रैफिक है उसको देख के चलना चाहिए और किसी भी सिग्नल को तोड़ना नहीं चाहिए।
0: तो सरला जी, आपने बहुत बढ़िया बात की हमसे, लेकिन एक बात हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि
1: जी हाँ
0: जब भी हम वाहन चलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो सड़क है, वो
1: जी
0: रेस
1: हाँ
0: का मैदान नहीं है।
1: जी हाँ
0: अगर आप सड़क पर तेज़ गति से गाड़ी चलाते हैं, किसी से होड़ करते हैं, किसी से रेस लगाने लगते हैं, तो ना
1: हाँ
0: केवल ये आपकी जान के साथ खिलवाड़ है
1: जी
0: बल्कि
1: हाँ
0: उस सड़क पर चलने वाले अन्य राहगीरों के लिए या
1: जी
0: दूसरे
1: हाँ
0: वाहन चालकों की जान भी आपकी

0: इस आदत की वजह से खतरे में पड़ सकती है।
1: जी हाँ, दूसरों को भी खतरा रहता है, वो स्वयं गाड़ी वाहन चलाते समय कृपया मोबाइल से बात न करें, कहीं भी रुक कर बात करें, और आपस में दो दो देखें वो तो भी बात न करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने इस बात को ध्यान में रखकर गाड़ी चलाएं कि आप जब गाड़ी चलाएं तो केवल अपना पूरा ध्यान, केवल और केवल आपका पूरा ध्यान सड़क पर हो।
1: जी हाँ जी हाँ
0: धन्यवाद आपको।
1: जी हाँ, थैंक यू वेरी मच।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार।
1: जी, सुन पा रहा हूँ सर। जितेंद्र पंडोले बात कर रहा हूँ सर, मैं छिंदवाड़ा से। सर
0: अच्छा जी, बताइए कैसे हैं?
1: मैं तो ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज आपने फ़ोन किया है बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, और आज
1: जी
0: की
1: जी
0: बात का विषय है कि वाहन चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां आप रखते हैं और कौन कौन सी रखी जानी चाहिए जिनकी जानकारी आपको हो, लेकिन आप अपने हमारे और किसी श्रोता को वो जानकारियाँ बताना चाहेंगे।
1: जी जी जी जी सर, वाहन चलाते हैं सर आजकल तो सभी लोग वाहन का यूज कर रहे हैं सर, और ज्यादातर ई व्हीकल यूज करना भी चाहिए। वाहन चलाते समय सर, सबसे पहले हम घर से निकले तो एक तो फोर व्हीलर से निकले तो सीट बेल्ट लगाए, और बाइक या मोपेड से निकले तो हेलमेट लेकर कैरी कर साथ में निकले। और सर साथ में निकले तो प्रॉपर जो सिग्नल्स होते हैं उसको फॉलो करें, ना कि बिना सिग्नल को देखे और उसको इग्नोर करके तोड़ के चले जाए। ये दुर्घटना का बड़ा कारण हो सकता है सर, तो इन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी।
0: बिल्कुल, आपने एक बड़ी अच्छी बात की ओर इशारा किया है कि वाहन चलाते समय हम सिग्नल्स की अनदेखी ना करें, आपाधापी में या जल्दबाजी के दौरान इस बात का ध्यान ज़रूर रखा जाना चाहिए कि कोई भी सिग्नल अगर आप
1: जी
0: जंप करते हैं तो ये ना केवल आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, बल्कि सड़क पर चलने वाले किसी दूसरे
1: जी
0: व्यक्ति की
1: बिल्कुल
0: भी
1: बिल्कुल सर,
0: जान आपकी इस हरकत की वजह से, आपके इस दुर्घटना को आमंत्रित करने वाले तौर तरीके की वजह से खतरे में पड़ सकती है।
1: जी सर,
0: आपने हमारे इस कार्यक्रम में फ़ोन किया, इतनी अच्छी बातें की, इसके लिए आपको देते हैं धन्यवाद। एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे। नमस्कार।
1: जी, नमस्कार सर, नमस्कार।

0: हाँ जी नमस्कार
1: जी सर नमस्कार।
0: जी।
1: सर आकाशवाणी से बात कर रहे हैं।
0: हाँ जी आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं, अपना परिचय
1: जी
0: दीजिए।
1: सर। सर मैं पिंकी असाटी छतरपुर से बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी कैसी हैं जी?
1: मैं ठीक हूँ सर, बढ़िया हूँ मैं।
0: अच्छा जी, क्या करते हैं आप?
1: सर मैं बेसिकली एक टीचर हूँ।
0: अच्छा जी, तो वाहन चलाते हैं कि नहीं आप? गाड़ी
1: जी सर
0: चलाते हैं
1: चलाती हूँ।
0: जी।
1: बिल्कुल
0: गाड़ी चलाते वक्त किन किन बातों का आप ध्यान रखती हैं, किन किन बातों को चाहती हैं कि दूसरे भी इन बातों पर ध्यान दें?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा सर।
0: जी
1: एक्चुअली मैं तो अभी मैंने गाड़ी भी नई नई ही सीखी है, तो मैं जो मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात सर कि ट्रैफिक सिग्नल को हमें बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, जो कि ज्यादातर लोगों को जब गाड़ी बहुत अच्छे से आ जाती है तो वो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। और बहुत सारी चीजें सर, बरसात के समय में तो विशेष रूप से हमें सड़क का भी ध्यान रख के, ओवर स्पीड ना करके, ऐसी कई चीजें सर जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए।
0: आपने एक बहुत अच्छे विषय की ओर इशारा किया है कि बरसात के दिनों में चूंकि सड़कें गीली रहती है, उस पे मिट्टी कीचड़ वगैरह रहता है, तो
1: बिल्कुल
0: वाहनों को फिसलने की जो अंदेशा रहता है, आशंका जो रहती है, वो बढ़ जाती है। तो ऐसे मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए गाड़ी चलानी चाहिए
1: बिल्कुल सर।
0: जी। और कोई ऐसी बात जो लगता है कि जिसकी ओर सामान्यतः व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़ पाती है, वो सामान्य तौर पर उस बात को नज़रअंदाज कर जाता हो, वो अगर आप बताना चाहें तो?
1: हाँ सर, मेरे हिसाब से तो मैंने जो अपने यहाँ देखा है तो ट्रैफिक सिग्नल ही सबसे बड़ा इशू है। आजकल की ये भागती दुनिया में लोग इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि वो ट्रैफिक सिग्नल की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं।
0: बिल्कुल, ये एक आपने अच्छा मुद्दा उठाया कि सड़कों पर चलते समय, गाड़ी चलाते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स जो बनाए गए हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, हमारी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। तो किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर जब रुकने का अगर निशान है, रुकने का इशारा किया गया है, तो रुकें, और जब चलने की बारी आए तभी चलें। इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें, और गाड़ी मोड़ते वक्त भी इस बात का ध्यान रखें कि जब आप गाड़ी मोड़ रहे हों या आप लेन बदल रहे हों, तो जब तक आप प्रॉपर तरीके से, जब तक इस बात को पुरजोर तरीके से दूसरों को ना बता दें, तब तक आप अपनी वाहन को दूसरी लेन में ना पहुंचाएं या दूसरे लेन में ना चलाएं
1: बिल्कुल इसका भी ध्यान रखना चाहिए।
0: जी। गाड़ी मोड़ते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि अपना हाथ जो है, जिस ओर मुड़ रहे हैं आप, उस ओर का हाथ आपको इतना इस तरीके से इशारा करना है कि पीछे चलने वाला या सामने से आने वाला वाहन चालक उस बात को समझ जाए। कुछ लोग केवल हाथ हल्का सा, थोड़ा सा ऐसा हिलाते हैं, या केवल हल्का सा हाथ थोड़ा सा उठाते हैं, जिससे यही नहीं पता चल पाता है कि वो मुड़ना चाह रहे हैं या उन्होंने केवल सामान्य तौर पर अपना हाथ ऊपर उठाया है। चलिए, आपने हमसे अच्छी बातें की, आपने बहुत समय निकाल कर हमें फ़ोन किया, इसके लिए धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फ़ोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। अब ये कार्यक्रम ख़त्म होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। ग्यारह बजकर 58 मिनट होने जा रहे हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल उज्जैन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मिशन बुनियाद परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नवनियुक्त प्राथमिक शाला शिक्षकों को नियुक्ति पत्र

0: पत्र भी वितरित करेंगे। भोपाल के चौथे रेलवे स्टेशन निषादपुरा की शुरुआत आज से होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। यहां मालवा एक्सप्रेस के अलावा सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज रहेगा। इंदौर जाने वाली ट्रेनें अब निषादपुरा से शुरू होंगी। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक मीटिंग 5 से 8 अगस्त तक भोपाल में आयोजित होगी, जिसमें ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल जनजाति संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, वन विहार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का दौरा भी करेंगे। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। यह दिन जलवायु परिवर्तन, प्रकृति की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के कल्याण के लिए प्रकृति संरक्षण और सतत विकास के महत्व पर जोर देना है। वहीं आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी है। यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और इस वायरस के लिए एक टीका विकसित किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल और इंदौर सहित सभी जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। बारह बजने जा रहे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला नगमा ये रहा।

आशा भोसले और साथियों को आप सुन रहे हैं अली बाबा 40 चोर फिल्म से। आर डी वर्मन ने इस गीत को संगीत से सजाया है, बोल है आनंद बख्शी के और सुनने वाले हमारे ये सभी श्रोता। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। भाटापारा दतरंगी छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनने के लिए अपनी चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा ने। अब कार्यक्रम में हम जिस गीत को लेकर आ रहे हैं उस गीत के लिए अपनी चिट्ठी लिख भेजी है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, अस्मा, सालिया, शोएब खान और साथ में हैं शाहिद भाई। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा इसी गीत को सुनने की ख्वाहिश करते हैं और ये है अभिजीत गावणकर, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गावणकर, इन्होंने ये चिट्ठी लिख भेजी है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से अगला खत लिख भेजा है हमें शैलेश गावणकर, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गावणकर ने। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

ये गीत है बधाई दो फिल्म से, नक्श अजय अमित त्रिवेदी और साथियों ने इसे गाया है, वरुण ग्रोवर ने शब्द दिए हैं और धुन है अमित त्रिवेदी की।

और अब हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं हमारे इन दोस्तों की फरमाइश। ये है गोलमाल फिल्म का वो गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और अमित कुमार ने। गुलजार के बोल हैं राहुल देव बर्मन का संगीत। सुनना चाहते हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु, राशि, रक्षित एवं इनका पूरा परिवार, अनिल कवचाले, नेहा फणसे, सीमा, सबीहा, पूजा, सुषमा, स्मिता और इनके साथियों ने ये गीत सुनना चाहा है। चिट्ठी लिख भेजी है स्कीम नंबर 71 इंदौर से। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी

फ़ातिमा ख़ातून, पुराना तालाब डुमगांव से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और इनका परिवार, सारिमपुर बक्सर से इस ख़त को लिख भेजा है राज एसडी अंसारी और गुलफराज भागलपुरी ने। इन सभी दोस्तों ने सुनना चाहा है गोलमाल फिल्म का ये गीत।

0: सम कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, ताल कहाँ, सम कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, तेरे कर तुम, नान कर तुम, तेरे कर तुम, नान कर तुम, हम तुम, नदासात, हिपासात, लतासात, पतासात, मेरा कस करामत,
1: ताते थे ता,

ये गीत आप सुन रहे हैं काला पत्थर फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने इसे गाया है, साहिर ने लिखा, धुन राजेश रोशन की। इस गीत को और इस गीत के बाद आने वाले गीत को सुनवाने के लिए हमारे जिन दोस्तों ने अपनी चिट्ठियां लिख भेजी हैं उनके नाम ये रहे: जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जे एस नायक, शोभा नायक और इनका पूरा परिवार हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से ये चिट्ठी लिख भेजते हैं। राजपुर से ये अगला खत आया है: घीसू, दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, स्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे का, गांव भड़भूंजी, ज़िला आगर, मध्य प्रदेश से ये चिट्ठी लिख भेजे हैं। रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला और ओम प्रकाश ने। और एक दो खत और हैं, ये हैं राम सखी परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन और इनका पूरा परिवार, श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य और साथ में हैं परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। इन्होंने गोल बाजार बक्सर से ये खत लिख भेजा है। ये गीत है कविता कृष्णमूर्ति और शब्बीर कुमार की आवाजों में, अनजान के बोल, फिल्म का नाम शोला और शबनम, धुन बप्पी लहरी की।

0: शुल और शबनम फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब ख़त्म होता है। आप सभी को हमारा नमस्कार। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:25 होने जा रहे हैं, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: भाग है। भारतीय सेना, भारतीय सेना।
1: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
2: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:30 हुए हैं, ये समय है संग्रहालय से कार्यक्रम का। इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कामिनी का एकांतारे, आज इसकी 13वीं कड़ी का प्रसारण किया जा रहा है।
5: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी का एकांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी का एकांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 13वां भाग। अब तक आपने सुना कि भेषज्ञ त्रिलोचन उज्जैनी जाते हैं और अपने मित्र वैद्यराज मृगांक दत्त से मिलते हैं। त्रिलोचन का उद्देश्य वैसिका से मिलना है और इसी के लिए वे मृगांक दत्त की सहायता लेते हैं, परंतु उनका कार्य सिद्ध नहीं होता क्योंकि रानी पिंगला और वैसिका अज्ञातवास में कठोर तांत्रिक अनुष्ठान कर रही होती हैं। अब आगे।

0: सुझाव चंपा का ही था कि रानी को अनुष्ठान करना चाहिए। चंपा नरेश की उपपत्नी है। दहेज में रानी के साथ मायके से आई हुई दासी। परंपरागत सेवा समर्पण से संपन्न है वो। वो जानती है कि वो ब्याहता नहीं है। चंपा ने कभी रानी होने का सोचा भी नहीं, किंतु वो सदैव राजा को अपना स्वामी ही नहीं, मन ही मन अपना पति भी मानती आई है। और अब तो उसके गर्भ में राजा का अंश, राजा का गर्भ भी पल रहा है।
1: राजा के चले जाने पर मेरा मन चिंतित है और उद्विग्न भी। मैं जानती हूँ कि संतान की कामना में रानी पिंगला बहुत अशांत और व्यग्र रहती है। इसलिए गत 15 महीनों से प्रति माह पूर्णिमा को गढ़ कालिका की महाअर्चना हेतु जाती रही है। नितांत गोपनीय रूप से, गुप्त द्वार से अकेली, किसी को सूचना नहीं। वो नहीं चाहती कि राजा को अनुष्ठान का ज्ञान हो। वह संतान के रूप में फलवती होकर महाराज को आकस्मिक प्रसन्नता देना चाहती है।
0: महाअर्चना

के दुर्ग से बाहर की इन यात्राओं में सुरक्षा के लिए महारानी के साथ केवल एक अत्यंत विश्वसनीय, बलिष्ठ, सुंदर और युवा सेनानायक उनके साथ होता था, जो महालय के भीतर कभी नहीं आया। कौन था ये भी किसी ने नहीं जाना। महादेवी अंतिम बार होलिका पूर्णिमा को गई थी और तभी से गुमसुम है। चंपा ने अनेक बार उनके उन्मन क्षोभ का कारण जानने का प्रयास किया, किंतु वो तो गहरी सांस भर कर रह जाती या आंसू टपकाने लगती। इसी बीच राजा भर्तृहरि किसी दिन अचानक और अज्ञात रूप से महालय और उज्जैनी छोड़कर चले गए। कहां किसी को ज्ञात नहीं।

40 दिन का अत्यंत कठोर तांत्रिक अनुष्ठान, जिसका सुझाव और परामर्श चंपा ने रानी पिंगला को दिया था। निर्जन बियाबान स्मशान भूमि में इसे साधा जाना था। इस अवधि में कठोर संयम और नियमों का निर्वाह। अनुष्ठान की अवधि में रानी को नंगे पांव रहना होगा, सिर में तेल नहीं लगेगा, केश खुले और सूखे रहेंगे। एक समय स्वपाकी भोजन, निरामिष और शुष्क, सभी कार्य स्वयं और रात में जलती चिताओं के बीच मंत्र पाठ, हवन और साधना। वैसिका सोच रही थी कि ऐसा कठोर अनुष्ठान क्यों स्वीकार कर लिया रानी ने। उसका ये अनुमान दृढ़ होता जा रहा था कि नरेश ने महारानी के कारण ही घर छोड़ा है, किंतु कारण वो नहीं जानती थी। वो जानती थी कि पुत्र कामना के लिए महादेवी प्रति पूर्णिमा की रात गढ़कालिका की ओर जाती थी, किंतु उनके साथ कौन होता था ये उसे ज्ञात नहीं था। वो महामात्य के साथ अपने संशय को साझा करना चाहती थी, पर न उसे इसका अवसर मिला और न उसने इसके लिए अवसर को निकाला ही।

0: अब तू लौट जा चंपा।
1: जी।
0: यहाँ वैसिका रहेगी हमारे साथ। 40 दिन का कठोर जीवन तेरे लिए ठीक नहीं है। तेरी कोख में जो संतान है वो केवल राजा की ही नहीं हमारी भी है। उसे संभाल कर रखना तुझ पर बहुत बड़ा दायित्व है। यूं समझ ले कि हमारा ही अंश तेरे गर्भ में पल रहा है। संभव है कि यही हमारे माथे का दुर्भाग्य पहुंचे।
1: किंतु रानी जी, आप कैसे साथ पाएंगी 40 दिनों का ये कठोर अनुष्ठान? कठोर भूमि पर शयन तो दूर, आप कभी नंगी भूमि पर भी नहीं बैठी। अल्पाहार, निराहार, उपवास, नितांत शुष्क एकांत साधन।
0: चंपा मेरी बहन, स्त्री सब साथ लेती है, सह लेती है। सहते जाने का अभिशाप ऐसे कठिन समय में हमारा अभ्यास हो जाता है। चंपा, किसी को पता ना चले कि तुम गर्भवती हो।
1: जी रानी।
0: और हमारे वापस आने तक तुम्हें महालय का गुमान बनाए रखना है।
1: जी बिल्कुल।
0: और माँ मात्य सब जानते हैं, वो तुम्हारे अभिभावक हैं, रक्षा करेंगे तुम्हारी। महाकाल सब मंगल करेंगे चंपा। अब हम चलते हैं।
1: जी रानी।
2: चंपा बहन, महादेवी की चिंता ना करना, वैसिका उनके लिए अपने प्राण तक समर्पित कर देगी। ये अनुष्ठान उनके अकेले का नहीं है, मैं भी उनके साथ हूँ। वो अपने

0: पति को वापस लाना चाहती हैं और मैं चाहती हूँ कि अवंती नरेश अपनी राजधानी में वापस आ जाएं।
1: जी।
0: महामाती ने इस अत्यंत गोपनीय अभिचर के लिए मुझे सहयोगी के रूप में चुना है। मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी।
1: क्या हुआ वैसिका?
0: कुछ नहीं देवी, देव के विधान पर सोच रही थी। काल की गति और परिणाम जानने के गर्वोक्ति चाहे विज्ञानी करें या कोई देवज्ञ, कोई समझ नहीं सकता। आप किंचित विश्राम करें, मैं इन 40 दिनों वाली पूजा की व्यवस्था लगाती हूँ। और क्षमा करें महादेवी, इन 40 दिनों में अपने उपयोग का जल आपको स्वयं ही नदी से भरकर लाना होगा। आज शनिवार है और आपके अनुष्ठान का प्रारंभ आज ही से हो रहा है।
1: हम तो भूल ही गए थे कि अब 40 दिन तक हम राजमहिषी नहीं हैं।

रानी पिंगला ने तंत्र उपचार प्रारंभ कर दिया। कुटिया से 10 धनुष उत्तर में अधसूखे वृक्ष पीपल के नीचे क्रियाएं होनी है। वैसिका ने अनुष्ठान की सामग्री वहां क्रमानुसार लगा दी। मूंज, कुश, खप्पर, दीपक, जौ, तिल, अक्षत, गंध आदि, कच्चा सूत, इंद्रजौ, गुग्गल, रक्तचंदन, कर्पूर, संपूर्ण सामग्री का संयोजन अत्यंत सावधानी से, तनिक भी त्रुटि अथवा न्यूनता अधिकता अनुष्ठान की असफलता का कारण बन सकती है। अत्यधिक सतर्क थी वैसिका सामग्री सहेजने में।

अर्धरात्रि से दो घड़ी पूर्व रानी पिंगला तांत्रिक क्रिया संपन्न करके कुटिया में लौटी। पहला दिन व्यतीत हुआ, 39 दिन अभी और यही क्रम, यही साधना होनी है।

0: वैसे का दीप जला लेती, भीतर अंधेरा भरा है।
1: मुझे रात्रि में चित लेटकर आकाश की ओर ताकना अच्छा लगता है महादेवी। दीपक की लौ से ये भान होता है कि कोई और भी है, और इससे आकाश के शून्य से मेरे संबंध में बाधा उत्पन्न होती है।
0: ओहो, तो इन दिनों आकाश से

0: कदाचित सहायता भी कर सके हम तुम्हारी।
1: इस प्रसंग को छोड़िए महारानी, आप अपना भोजन बना लें, मैंने अपना बना लिया है, साथ साथ ही ग्रहण करेगी।
0: ठीक है वैसिका, तुम अपने आकाश से संवाद करो और हम अपना आकाश खोजते हैं।

0: और सुरक्षा के लिए महामात्य ने विशेष व्यवस्था कर रखी थी। धनुष बाण, खड़क से प्रतिपल सन्नद जीवा सदा उनके आसपास रहता, किंतु अदृश्य, उपस्थित होते हुए भी अनुपस्थित, केवल वैसिका ही जानती थी। रानी यही समझती रही कि वो दोनों ही केवल उस निर्जन एकांत में हैं, उनके सामने जीवक कभी प्रकट नहीं हुआ। 40 दिन पूरे होने के बाद जीवक महादेवी के सामने आया।
1: सेवक का प्रणाम स्वीकार करें महादेवी।
2: जीवक नाम है ना तुम्हारा?
1: हाँ महादेवी।
2: किस ग्राम से हो? हम व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे कृतज्ञ हैं। तुम्हें महामाते ने नियुक्त किया है ना?
1: महादेवी का अनुमान सत्य है।
2: कृषक हो?
1: मृत्यु हूँ महादेवी का।
2: अवंती पहुंचकर हम महामात्य से कहेंगे कि तुम्हें 5 गांव पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाएं।
1: आपका अनुग्रह दास का सौभाग्य है।
3: बंधु जीवक, ये महारानी है अवंती नरेश की अर्धांगिनी, जानते हो?
1: जानता हूँ देवी, क्यों नहीं जानूंगा।
3: तुम कृषक नहीं हो जीवक, यही सच है। तुम महादेवी के सामने असत्य भाषण कर रहे हो, और ये कि तुम महामात्य के परम विश्वस्त हो।
1: मेरा परम सौभाग्य है कि मैं महामात्य का क्रीत दास हूँ।
3: मैं भी क्रीत दासी हूँ, मुझे भी महामात्य ने क्रय किया था। अब अपने अपराध का दंड सुनो। तुम्हें हमारे साथ मेरे और महादेवी के साथ बैठकर भोजन करना पड़ेगा। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा महारानी?
2: नहीं वैसे का जीवक, इसे महादेवी की ओर से उनकी सेवा का पुरस्कार मानो।
3: अब स्वपाक स्व अवलंब की बाध्यता नहीं रही महादेवी, आप विराजें, मैं भोजन प्रस्तुत करती हूँ।
1: मैं एक सूचना लेकर प्रस्तुत हुआ था स्वामिनी।
3: मुझे स्वामिनी ना कहो जीवा। हाँ तो क्या सूचना है?
1: प्रातः ही यहाँ से प्रस्थान करना है, महामात्य व्यग्रता से आपकी प्रतीक्षा में है।
3: अन्य कोई सूचना?
1: कल सायं तक आप कनक श्रृंगा पहुंच जाएंगी, मुझे बस इतना ही ज्ञात है। प्रातः आप दोनों के लिए सवारी आ जाएगी। 4 कोस तक रथ का मार्ग नहीं है, वहां तक अश्व पर चलना होगा।
3: और कुछ
1: नहीं।
3: अच्छा ये बताओ, मेरे विषय में महामाती ने तुमसे कुछ कहा था?
0: जीवक चुप रहता है।
3: मैंने कुछ पूछा है जीवक?
1: जी यही कहा था कि महादेवी तो हैं ही, आपको भी मैं स्वामिनी समझकर ही व्यवहार करूं।
0: राजवर्ग से श्रेष्ठी वर्ग तक समाचार फैल गया कि रानी पिंगला गर्भवती हैं। महादेवी अपनी कोख में भावी नरेश का बीज सहेज कर आ रही हैं। प्रजा की 10 वर्ष की प्रतीक्षा फलवती होगी। महादेवी कल सायंकाल पुत्र श्रेष्ठ अनुष्ठान संपन्न करके महालय लौट आई हैं। नरेश अभी नहीं लौटे हैं, उनके लौटने का मुहूर्त राज ज्योतिषी निश्चित करेंगे। ग्रह दशा पूर्ण अनुकूल होने पर ही राजा भर्तृहरि महादेवी का दर्शन करेंगे। उत्सव प्रिय उत्सव धर्मी कनक श्रृंगा अवंती में नूतन चेतना का समीकरण बहने लगा। तोरण पताका यत्र तत्र सर्वत्र लहराने लगी। मार्गों वीथियों पर सुगंधित पुष्पों का ढेर जमा होने लगा। क्षिप्रा तट पर मंगलगान हेतु सुंदरियां एकत्रित होने लगी। आज उत्सव श्रृंखला के प्रारंभ का दिवस।

दिन प्रतिदिन यही उपक्रम। रानी पिंगला और वैसिका की ऐसी ही नित्यचर्या, जिसमें 40 दिवस और 40 रात्रियां व्यतीत हो गई। उनकी देखभाल

रानी पिंगला महाकाल का अभिषेक करने के पश्चात हरसिद्धि मंदिर पहुंचेगी, मंगलनाथ की अर्चना करेंगी, काल भैरव का समराधन कर गढ़ कालिका पर कुल सत्र में सम्मिलित होंगी और सायंकाल क्षिप्रा में दीपदान करेंगी।

0: महामात्य पधारे हैं, शीघ्र भेंट के लिए आग्रह किया गया है।
1: उन्हें सादर निवेदन करो कि महादेवी अभी पहुंचती हैं।
0: जी।
1: स्वामिनी, महामात्य पधारे हैं।
2: क्या?
1: महामात्य भेंट चाहते हैं, आ चुके हैं, वासंती कक्ष में प्रतीक्षा।

0: उन्हें सादर निवेदन करो कि महादेवी अभी पहुंचती हैं।
1: जी।
0: स्वामिनी, महामात्य पधारे हैं।
2: क्या?
0: महामात्य भेंट चाहते हैं, आ चुके हैं, वासंती कक्ष में प्रतीक्षारत हैं।
2: अच्छा वैसिका, तुम चलो, हम आते हैं।
0: देव दासी प्रणति निवेदन करती है।
3: ओह, वैसिका, बैठो बैठो।
0: लोकापवाद होगा महामना, एक दासी महामाती की उपस्थिति में आसन ग्रहण करेगी तो महालय हिल उठेगा। मैं तो अकिंचन हूँ, अस्तित्वहीन, किंतु लोक विश्वस्त अवंती राज्य के देवमान्य महामाती का गौरव नहीं। देव, इस समय आप भी स्वतंत्र नहीं हैं।
3: वैसिका, तुम नहीं जानती कि मैं कितना अकेला हूँ। कुल परिवार के सभी जन अपने अपने आमोद प्रमोद में व्यस्त हैं, लेकिन मैं अपने एकांत में भटकता रहता हूँ। तुमने कदाचित ना सोचा हो कि तुम्हारा साथ पाकर मैं अपना दायित्व और सुचारू रूप से निर्वाह कर पाऊंगा। मैं भीतर से थक रहा हूं वैसिका, दृढ़ता का अभिनय अब मुझसे नहीं सद पा रहा।
0: शांत हो देव, आसन ग्रहण करें।
3: महीनों से राजा के दर्शन नहीं हुए, राज्य आरक्षित हो रहा है, बाह्य शत्रु तो घात लगाए ही रहते हैं। कौन जाने राज परिवार के ही किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा कब जाग उठे। राजा की उपस्थिति के अभाव में महामात्य की शक्ति वंध्या हो जाती है। चौमासा चला गया और महाराज के विषय में कोई सूचना नहीं है। प्रजा और राजन्यों को भरमाने के लिए मैंने महादेवी के गर्भवती होने का भ्रम फैलाया है, एक अर्ध सत्य का सहारा लिया है। मुझे तुम्हारे अवलंब की आवश्यकता है वैसिका। क्या मैं केवल महामाते ही बना रहूं? मुझे मनुष्य नहीं रहना चाहिए।
0: अवंती जैसे शक्तिशाली राज्य का महामाते भी आत्मीय अवलंब के अभाव में कितना शीहीन है। प्रवंचना और असत्य के महाव्यापार में विश्वास की इच्छाओं के बिना क्यों नहीं जी पाता। महाकाल, तेरी रचना विचित्र है।
4: महादेवी पधार रही हैं।

0: महादेवी स्वस्थ तो है ना?
1: अनुग्रह है महाकाल का, आप पधारने का हेतु कहें।
0: वो क्या गोपनीय चर्चा कर सकता हूं?
1: ओ वैसे का, तुम यहीं ठहरो और सुनो कि आर्य महामात्य क्या क्या कहते हैं। हमारा चित्त अभी उद्विग्न है, द्वंद बना रहता है। ऐसे में महामात्य से मंत्रणा में तुम ही हमारी सहायता कर सकती हो। आर्य, हमने वैसिका को दासता से मुक्त कर दिया है, अब वो हमारी सेविका नहीं सहयोगिनी है। ये चतुर है और धैर्यशील भी, बिना किसी महत्वाकांक्षा के राज परिवार के प्रति समर्पित भी है। हमसे संबंधित किसी भी चर्चा में आप निसंकोच इससे परामर्श कर सकते हैं। दासत्व से इसकी मुक्ति के साक्षी आप बने। वैसिका, तुझे अब अपनी ही नहीं हमारी भी देखभाल करनी है। राज महालय की गरिमा बनाए रखने का भार अब तेरे कंधों पर है। बोल, स्वीकार है?
2: आपके हर आदेश का पालन करूंगी।
1: आर्य
0: जी,
1: हमारी इस इच्छा को आप संबंधितों तक सूचित कर दें। अब से वैसिका की हर इच्छा को महारानी का आदेश माना जाए।
0: क्षमा करें महादेवी, ये उचित नहीं होगा।
1: क्यों, क्या बात?

0: कार्य?
1: इसलिए कि राजन्य वर्ग का अहंकार किसी परिचारिका अथवा दासी को अचानक अपने समकक्ष स्वीकार नहीं करेगा। महाराज यहां होते तो कुछ संभव था। इस समय तो इसे षड्यंत्र ही समझा जाएगा, विरोधियों को अपवाद का अवसर मिलेगा। आपके देवर कुमार विक्रम पहले से ही असंतुष्ट हैं। महाराज की अनुपस्थिति में उनका स्वेच्छाचार सीमाएं लांघ रहा है।
0: फिर
1: हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी, सतर्कता और संतुलन बनाए रखना होगा।
0: आर्य
1: जी,
0: इस उत्सव के दीर्घ आयोजन का प्रयोजन बताएंगे आप?
1: निश्चय ही देवी। प्रथमता तो ये कि इतने दिनों तक प्रजा उत्सुक और व्यस्त रहेगी, उसका ध्यान बटा रहेगा। कुछ दिन उत्सव में बीतेंगे, फिर कुछ दिन उसकी चर्चा, स्मृति और आलोचना में। तब तक संभव है कि महाराज की कोई सूचना हमें मिले, अथवा सौभाग्य से वो स्वयं आ जाएं। उसके अतिरिक्त ये समाचार भी फैलेगा कि इस उत्सव का आयोजन राज्य के उत्तराधिकारी के गर्भ में आने के कारण हो रहा है। समाचार महाराज तक भी पहुंचेगा और वो स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। मैंने तो यही सोचा है। आगे महाकाल की इच्छा। आप कुछ और जानना चाहेंगी माँ देवी?
0: हमें क्या जानना है आर्य?
2: अनुचित ना हो तो मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आर्य। निवेदन करूँ स्वामिनी?
0: वैसिका, हमने तो पहले ही अपना दायित्व तुझे सौंप दिया है, अतः कोई संशय या जिज्ञासा हो तो आर्य के सम्मुख रखो।
2: देव
1: जी,
2: आपकी योजना सर्वांग संपुष्ट है। महाराज के गमन को 3 माह और 27 दिवस व्यतीत हुए हैं, इसलिए ध्यान रखना होगा कि गर्भ 4 माह से अधिक का है। इस उत्सव में महादेवी जहाँ भी पहुँचें, उनके उठने बैठने वार्ता व्यवहार से ये परिलक्षित होना चाहिए कि वे गर्भवती हैं और उन्हें इन दिनों प्रायः प्रतिदिन किसी न किसी युक्ति से सामान्य प्रजा के बीच जाना होगा, ताकि राजन्य वर्ग में जनसाधारण में नरेश की अनुरक्ति की चर्चा चले। प्रजा की अनुरक्ति नरेश के प्रति षड्यंत्रों को हतोत्साहित करती है।
0: हाँ, ये उचित है।
1: हाँ, ये ठीक है।
3: सभी ने वैसिका के सुझाव पर सहमत

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 13वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कामिनी का एकांतारे की 13वीं कड़ी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल उज्जैन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मिशन बुनियाद परियोजना का शुभारंभ और नव नियुक्त प्राथमिक शाला शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। भोपाल के चौथे रेलवे स्टेशन निषादपुरा का आज से शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यहां सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस का स्टॉपेज भी रहेगा। वहीं इंदौर जाने वाली ट्रेनें अब निषादपुरा से शुरू होंगी। 5 से 8 अगस्त तक भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक मीटिंग में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रतिनिधि मंडल जनजाति संग्रहालय, राज्य संग्रहालय और वन विहार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का दौरा भी करेंगे। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के कल्याण के लिए प्रकृति संरक्षण और सतत विकास के महत्व पर जोर देना है। वहीं आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी है। यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और इस वायरस के लिए एक टीका विकसित किया। अमृतसर के

0: श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। इससे वर्ष 2030 तक लगभग 4 लाख रोजगार सृजित होंगे। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर सहित सभी जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

सिक्यू बारिश की इस रिमझिम फुहारों के साथ महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी प्यारी प्यारी सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए सुषमा व्यास का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, कहते हैं स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जागरूकता उसकी सबसे मजबूत सुरक्षा। सखियों, हम अपने परिवार के हर सदस्य की सेहत का ख्याल रखती हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बिना शोर मचाए धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती रहती है। ऐसी ही एक बीमारी है हेपेटाइटिस, जो हमारे लीवर यानी यकृत को प्रभावित करती है। सखियों, इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। सखियों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये हेपेटाइटिस होता क्या है। सखियों, हेपेटाइटिस यानी लीवर में सूजन, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे सामान्य सा कारण है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई वायरस। सखियों, इनमें से कुछ प्रकार के दूषित भोजन और पानी से फैलते हैं, जबकि कुछ संक्रमित खून और असुरक्षित इंजेक्शन या असुरक्षित शारीरिक संपर्क से भी फैल सकते हैं। सखियों, चिंता की बात यह है कि कई बार शुरुआत में इसके कोई खास लक्षण दिखाई ही नहीं देते, लेकिन जब तक पता चलता है तब तक लीवर को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है। सखियों, अगर लगातार थकान महसूस हो, भूख कम लगे, आंखें या त्वचा पीली पड़ जाए या फिर पेट में दर्द हो, तो इसे नजरअंदाज ना करें। समय पर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। सखियों, हेपेटाइटिस से बचाव के लिए जरूरी है कि हमेशा हम साफ और उबला हुआ पानी ही पिए, बाहर का कटा हुआ फल या अस्वच्छ भोजन खाने से बचे, इंजेक्शन हमेशा नई और डिस्पोजेबल सुई से ही लगवाइए, किसी का रेजर, नेल कटर या फिर टूथब्रश साझा ना करिए, बच्चों और नवजात शिशुओं का हेपेटाइटिस बी टीकाकरण समय पर जरूर करवाइए, और यदि डॉक्टर सलाह दे तो समय समय पर अपनी जांच भी करवाते रहिए। सखियों, अक्सर हम महिलाएं पूरे परिवार की सेहत का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपनी जांच और स्वास्थ्य को टाल देती है। याद रखिए सखियों, यदि आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो बीमारी से लड़ने का सबसे आसान तरीका है कि उससे पहले ही बचाव कर लेना चाहिए। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ये तो बात हुई स्वास्थ्य की, और कार्यक्रम में आज सखियों आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुनवाती हूँ ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

सखियो, आज के दौर में हर महिला की यही इच्छा होती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, अपने परिवार की आर्थिक मजबूती में हाथ बटाए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। इसी सोच को साकार करने के लिए सरकार चला रही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। सखियो, अगर आप गांव में रहती हैं और अपना कुछ नया काम शुरू करना चाहती हैं तो ये योजना आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। इस मिशन के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं नियमित बचत करती हैं, कम ब्याज पर ऋण प्राप्त कर सकती हैं और अपना छोटा व्यवसाय जैसे सिलाई, डेयरी, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती या पापड़ बनाना, मसाला पैकिंग, हस्तशिल्प और कई अन्य स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं। इतना ही नहीं सखियों, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, व्यवसाय शुरू करने की जानकारी, बैंक से जुड़ने में सहायता और अपने उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने में भी मदद दी जाती है। यानी सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि उसे सफल बनाने का मार्ग भी दिखाया जाता है। सखियों, अगर आपके गांव में स्वयं सहायता समूह पहले से बना हुआ है तो उससे जरूर जुड़िए और अगर नहीं बना है तो अपने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, विकास खंड कार्यालय या ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय से संपर्क करके इसकी जानकारी लीजिए। सखियों, जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती है ना तो सिर्फ एक परिवार नहीं पूरा गांव आगे बढ़ता है। तो अवसर का लाभ उठाइए, अपने हुनर को पहचानिए और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ आत्मनिर्भर भारत की मजबूत कड़ी बनिए। और जैसा कि हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं सखियों, तो हमारा ऐसा ही क्रम है मेरी उड़ान, जिसमें हम अलग अलग सखियों से उनकी उड़ान की कहानी सुनते हैं। तो चलिए रुख करते हैं हमारे क्रम मेरी उड़ान में। सखियों, कहा जाता है कि शब्द दिल तक पहुंचते हैं लेकिन संगीत सीधे आत्मा को छूता है। खुशियों के रंग हो, यादों की महक हो या फिर भावनाओं की गहराई, हर एहसास का एक सुर होता है। तो कार्यक्रम मेरी उड़ान में बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक उभरती हुई गायिका का।

0: पर। क्या बात है, ये खूबसूरत सी आवाज है हेमा मछिया जी की, जिनसे होगी आज हमारी मुलाकात हमारे क्रम मेरी उड़ान में। बहुत बहुत स्वागत है हेमा जी आपका।
1: थैंक यू सो मच।
0: हेमा जी, हमारा जो क्रम है मेरी उड़ान, उसमें हम बात करते हैं महिलाओं के उस सफर की जिसमें वो अपनी पहचान अपने स्तर पर बनाती है। तो सबसे पहले तो हम आपसे आपकी कहानी, आपके सफर की शुरुआत जानना चाहेंगे।
1: मेरा संगीत का जो सफ़र है वो बचपन से ही शुरू हो गया था। मेरे नानी गाते थे भजन, मैं उनके साथ में गाती थी। तब मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था, तब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हुआ करती थी और मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में ही हुआ करता था। और फिर इसके बाद में मैं जब 10th क्लास में गई तो मैं एक म्यूज़िक टीचर हमारे स्कूल में आए, और फिर उसके बाद में जब टीचर से मिले तो टीचर को कुछ दिखा होगा, शायद उनको प्रतिभा दिखी छुपी हुई। देन उन्होंने मुझे फोर्स किया कि चलो अब ये कंपटीशन के लिए तैयारी करो, ऐसे करो वैसे करो। उन्होंने तैयारी करा करा के और देन मुझे रियलाइज़ करवा दिया कि हाँ मेरे अंदर एक म्यूज़िक है। देन उसके बाद में मैंने 11th क्लास के बाद में म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया, और मुझे 12th तक आते आते ये तय हो गया था कि अब मैं इंजीनियरिंग तो नहीं करने वाली हूँ, म्यूज़िक में ही मुझे पढ़ाई करना है। तो फिर मैंने उसके बाद में बैचलर ऑफ़ आर्ट्स, देन मास्टर ऑफ़ म्यूज़िक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक।

0: वो कंप्लीट किया, और उसी के साथ में मेरे फादर अचानक से ही एक्सपायर हुए. देन उसके बाद में मैंने म्यूज़िक में काम करना स्टार्ट किया एज स्टेज परफॉर्मर. मैंने स्टार्ट किया गाना, और फिर वहीं से मेरा अर्निंग स्टार्ट हुआ. वहीं से फिर मेरा बैचलर डिग्री और जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, फिर मैंने बीएड भी किया क्योंकि मैं गवर्नमेंट में जॉब भी करना चाहती थी. मुझे ऐसा लगता था मैं म्यूज़िक लेक्चरर बन जाऊंगी, और फिर समय के साथ चीज़ें चीज़ें चलते गई चलते गई. देन उसके बाद में ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये जो असली प्यार है वो स्टेज से ही है. फिर स्टेज पर परफॉर्म करते हुए कभी फ्रीलांसिंग किया, फिर धीरे धीरे आज मैं अपना खुद का ग्रुप चला रही हूँ. मेरे कम से कम 5 to 8 म्यूजिशियंस मेरे साथ में रहते हैं.
1: आपने स्कूल से शुरू किया अपना सफ़र और आज आप अपना खुद का एक म्यूज़िक ग्रुप चला रही हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो पहली बार जब आप मंच पर आई, यानी आपने स्टेज शेयर किया, तो उस समय क्या दिमाग में आया था, किस तरह की अनुभूति थी आपके मन में?
0: बहुत सारा डर. जब आप फर्स्ट टाइम स्टेज पर इतने लोगों से कांटेक्ट करते हो, स्पेशली आई कांटेक्ट जब आप करते हो, तो बहुत सारा डर होता है. हाँ, बट उसके साथ में एक एक्साइटमेंट भी होती है कि हाँ, आपको परफॉर्म करना है, आपको परफॉर्म करने का मौका मिला है. और मुझे लगता है एक परफॉर्मर की भूख ही होती है स्टेज और उस परफॉर्म करना.
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो जैसे आपको पता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं गायकी छुपी थी, ऐसी हमारी बहुत सारी सखियां हैं जो अंदर ही अंदर गुनगुनाना पसंद करती है, लेकिन वो जानती है कि वो बहुत अच्छी सिंगर है, बनना चाहती है, आगे कुछ करना चाहती है। तो उनसे आप क्या कहेंगी अगर उनके अंदर भी एक छोटी सी गायिका छुपी हुई है तो?
0: मैं कहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पर हम इजीली बहुत सा अपने आवाज़ को लोगों तक पहुँचा सकते हैं. तो बहुत इजी है आज के समय में. और अगर आपका कोई फीमेल ग्रुप है, आप लोग सारे बहुत सारे लोग गाते हो, या तो आप एक टीचर को हायर कर सकते हो और अच्छा सीखने के लिए, या फिर आपकी किटीज में ही आप क्यों नहीं म्यूज़िक इवेंट्स करते हो.
1: छोटे छोटे म्यूजिक इवेंट्स का आप हिस्सा बनिए और दूसरों
0: बिल्कुल
1: को सुनिए और अपनी भी सुनाइए उन्हें,
0: राइट
1: है ना?
0: राइट सही.
1: आगे आपकी प्लान्स क्या है, आगे आप क्या करने वाली हो?
0: अभी तो मैं मोस्टली वेडिंग्स में ज़्यादा इवेंट्स करती हूँ जो कि ट्रेडिशनल इवेंट्स हैं. मारवाड़ी सॉन्ग्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा गाती हूँ अभी. और इसी से रिलेटेड मेरे कुछ प्लान्स हैं जो मैं आगे एग्जीक्यूट करना चाहूँगी. उन पर मैं बहुत सारा भी काम भी कर रही हूँ.
1: तो क्या सचमुच कोई महिला आकर इसमें अपना करियर बना सकती है?
0: बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत पैसा है. जो एंटरटेनमेंट फील्ड जो है हमारा, बहुत ज़्यादा पैसा है. बस ये है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो और कितनी जगह परफॉर्म कर सकते हो, या कितना अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हो. ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो हमें अर्निंग में काम कर सकते हैं. अगर आप परफॉर्म नहीं करना चाहते हो, तो आप म्यूज़िक सिखा सकते हो. आप घर पर म्यूज़िक सिखा सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो, देन ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हो. बहुत सारे यूएसए में, अलग अलग कंट्रीज़ में पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अपनी इंडियन संस्कृति के साथ में, हमारी भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ना चाहते हैं. और उन्हें सबसे बेस्ट तरीका वही लगता है कि बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जाए, हमारे क्लासिकल म्यूज़िक के साथ में उन्हें जोड़ा जाए. तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे आपको अगर आप म्यूज़िक सिखाना भी चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं, आप परफॉर्म करना चाहते हैं. आप रिकॉर्डिंग में कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं, रेडियो जॉकी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं.
1: यानी रास्ते बहुत सारे हैं, बस अगर आपने कहीं से संगीत सीखा हुआ है और भले वक्त हो गया है, लेकिन संगीत कहीं छूटता नहीं
0: छूटता
1: है।
0: नहीं.
1: तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए, उसे लोगों तक लेकर आइए ताकि आप भी खुश रहिए और लोगों को भी खुशी दीजिए। तो हमारी सखियां जो इस क्षेत्र से जुड़ना चाहती है, उनके लिए आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है।
0: थैंक यू सो
1: लेकिन
0: मच.
1: जाने से पहले कोई एक छोटा सा गीत हमारी सखियों के लिए हो जाए।
0: बिल्कुल.

0: क्या बात है, बहुत मधुर आवाज़ हेमा जी की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जिस तरह से हमारी सखियों को कहा है कि वो इस क्षेत्र में अपना एक मुकाम बना सकती है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहे हमारी सखियों से हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत
1: थैंक यू
0: धन्यवाद।
1: सो मच, थैंक यू, थैंक यू।
0: तो सखियों, ये था हमारा क्रम मेरी उड़ान। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: सखियों, बारिश के मौसम में सिर्फ कपड़ों और बालों की ही नहीं, हमारी त्वचा को भी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। नमी और उमस की वजह से चेहरा चिपचिपा और बेजान सा लगता है। तो आज के रूपलावण्य में जानते हैं कुछ आसान और असरदार फेस पैक, जिन्हें आप घर पर ही बना सकती हैं और अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकती हैं। सखियों, सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच दही और 1/2 चम्मच शहद। इन तीनों को मिलाकर 15 मिनट चेहरे पर लगाइए। ये त्वचा की हल्की एक्सफोलिएशन करता है और चेहरे पर प्राकृतिक निखार लाने में मदद करता है। और सखियों, आजकल ये फेस पैक काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अगर बारिश में चेहरा बार बार ऑयली हो जाता है तो सखियों, उसके लिए एलोवेरा जेल में थोड़ा सा खीरे का रस और 4 से 5 पुदीने की पत्तियों का पेस्ट मिलाकर 10 से 15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा कर रखिए। इससे त्वचा को ठंडक तो मिलेगी ही सखियों, ताजगी भी महसूस होती है। और सखियो, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसके लिए 1 चम्मच ओट्स का पाउडर, 1 चम्मच दही और थोड़ा सा गुलाब जल, इसे मिलाकर अपने चेहरे पर 15 मिनट तक लगा के रखिए और हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लीजिए। इससे त्वचा साफ और मुलायम होती है सखियो। अब एक छोटी सी बात, कोई भी फेस पैक लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और पहली बार अगर इस्तेमाल कर रही है ना तो पैच टेस्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तो सखियो, इन फेस पैक के जरिए आप अपनी त्वचा में अपने आप निखार महसूस करेंगी। और हम आपको सुनाते हैं एक और बहुत प्यारा सा गीत।
1: देखो देखो जानम, हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए

सखियों, बारिश की बूंदे, ठंडी ठंडी हवा और रसोई से आती गर्मा गर्म खाने की खुशबू, बस मौसम का मजा दुगना हो जाता है। लेकिन हर बार पकोड़े ही क्यों? आज बनाते हैं कुछ नया, स्वादिष्ट और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आने वाला कुरकुरा पालक कॉर्न रोल। जी हाँ सखियों, इसके लिए सामग्री नोट कर लीजिए। 1 कप उबला हुआ स्वीट कॉर्न, 1 कप बारीक कटा पालक, 2 उबले हुए आलू, 1 छोटा चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च और चाट मसाला, 2 ब्रेड स्लाइस का चूरा या फिर ब्रेड क्रम्स, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, रोल शीट या फिर ब्रेड के स्लाइस। साथ ही हमें चाहिए शैलो फ्राई करने के लिए तेल। सखियों, अब इसे बनाने की विधि भी नोट कर लीजिए। 1 बोल में उबला हुआ कॉर्न, पालक, आलू, मसाले और ब्रेड क्रम्स मिलाकर मिश्रण तैयार कर लीजिए। अब रोल शीट या ब्रेड में ये मिश्रण भरकर रोल बना लीजिए। हल्का सा कॉर्नफ्लोर का घोल लगाकर बंद कर दीजिए और तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर सुनहरा होने तक सेक लीजिए। गर्मा गर्म रोल्स को पुदीने की चटनी या फिर दही की डिप के साथ परोस दीजिए। सखियों, ये रेसिपी स्वाद के साथ साथ पौष्टिक भी है और बारिश की शाम के लिए तो एकदम परफेक्ट है। अगर बच्चे हरी सब्जी खाने से कतराते हैं ना, तो इस रोल में कद्दूकस किया हुआ पनीर और गाजर भी मिला सकती हैं आप। इससे स्वाद भी बढ़ेगा और इसका पोषण भी बढ़ जाएगा। तो सखियों, इस बारिश में पकोड़ों से हटकर कुछ नया बनाइए, क्योंकि मौसम नया है तो स्वाद भी तो नया होना चाहिए।

0: जैसे कि जब भी मौसम बदलता है ना, उसका सीधा असर हमारी स्वास्थ्य पर पड़ता है। हम सभी अपने घर में छोटी मोटी बीमारियों के लिए कुछ दवाइयाँ ज़रूर रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उनकी एक्सपायरी डेट देखी है? अक्सर दवा काम आने के बाद अलमारी या फिर फर्स्ट एड बॉक्स में रखी रह जाती है और महीनों तक उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। ऐसे में अनजाने में एक्सपायर्ड दवा का सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है। सखियो, ऐसी दवाएं असर कम कर सकती हैं और कुछ मामलों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकती है। इसलिए हर महीने सिर्फ 5 मिनट निकालिए और अपने घर के फर्स्ट एड बॉक्स की जांच जरूर कीजिए। जिन दवाइयों की एक्सपायरी डेट निकल चुकी हो उन्हें अलग कर दीजिए और दोबारा इस्तेमाल ना करें। सखियो, एक और बात, दवाइयों को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखिए, क्योंकि गर्मी और नमी भी उनकी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। और बिना डॉक्टर की सलाह के पुरानी दवा किसी और को कभी न दे। याद रखिए सखियों, सही समय पर सही दवा ही इलाज बनती है, लेकिन एक्सपायर्ड दवा लापरवाही का कारण बन सकती है। इसलिए आज ही अपने घर की दवाइयों की एक छोटी सी जांच जरूर कीजिए। ये 5 मिनट की आदत आपके परिवार की सेहत की बड़ी सुरक्षा बन सकती है। तो सखियो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और महिला सभा कार्यक्रम सुनते रहिए। आज के कार्यक्रम में सखियो बस इतना ही। इस कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। और अब अनुमति दीजिए सुषमा व्यास को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, ये आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रीति देवलो और साथियों द्वारा गाए मालवी लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं प्रभाती मालवी लोकगीत से। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रीति देवले और साथियों द्वारा गाए मालवी लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है उषा टंडन द्वारा गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। लीजिए प्रस्तुत है एक भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उषा टंडन द्वारा गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म गीत का कार्यक्रम, जिसमें आपको सुनवाएंगे पहला गीत अरिजीत सिंह और रूपाली मोघे की आवाज में फिल्म बधाई दो से।

अमित त्रिवेदी का संगीत वरुण ग्रोवर के लिखे बोल अरिजीत सिंह और रूपाली मोघे की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म बधाई दो से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में। फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा।

और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सभी की सुरक्षा की भी कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने और सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए शर्मिला को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पदक ने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक के लिए 2 दशक लंबे इंतजार को समाप्त किया। उन्होंने पुरुषों के 79 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतने पर वल्लूरी अजय बाबू को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारोत्तोलक ने स्नेच स्पर्धा में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। श्री मोदी ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने के लिए सर्वेश अनिल कुशारे को भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि प्रदेश में कल गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में परीक्षा और युवाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का, मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी आज घोषणा हो गई है। ये भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में स्थापित होने वाले हैं, जिनमें पेपर लीक और परीक्षा जैसे अन्य सभी मामलों का 3 माह के भीतर निराकरण किया जाएगा। और साथ में ये भी सुनिश्चित होगा कि जो युवा है उनके सपने साकार होने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए। इसके लिए साथ में सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, उसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो भी तैयार किया जाएगा।
0: मंत्री ने ये भी बताया कि आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट का राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागरिकों से स्वच्छता अपनाने और शुद्ध पेयजल, भोजन और पानी का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हेपेटाइटिस से बचाव के लिए दूषित भोजन और पानी से बचना तथा समय पर उपचार कराना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने लोगों से इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने और दूसरों को भी आवश्यक सावधानियां अपनाने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन का संकल्प लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रकृति का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की मजबूत नींव है। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज सतना, कटनी, उमरिया, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, रायसेन और बैतूल सहित 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 28 से 30 जुलाई के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। नागरिकों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से जिले के किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान देने के लिए 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। नीमच में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 28वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिंडौरी में वर्षा ऋतु के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिलेवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है, इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में वे हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, PCR लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज FIR की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: And for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
1: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के सांसद भी गठबंधन

0: की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
1: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
2: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
0: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
3: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
4: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन IR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
5: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
0: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक

0: महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
1: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहें।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण 86 इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशु रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशु शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष

मांडा सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जहां हम आपके भेजे गए पत्रों को शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइशी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उदित नारायण के द्वारा गाए हुए गीत से, जो है फिल्म पापा कहते हैं से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है राजा बाजार बिटिया से, सुरेश केशरी, पूनम केशरी, प्रतीक केशरी, नया बाजार बक्सर से राजेश केशरी, पंकज केशरी और रोहन केशरी ने हमें पत्र लिखा है। इसके अलावा एक पत्र हमें मिला है महसौल सीतामढ़ी बिहार से, नाज मंजिल से कुछ श्रोताओं ने हमें लिखा है। ये हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, बहु रुबीना वसीम, बहु बाबू आरिज वसीम, नवासा अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा मुजम्मिल बाबू, नवासी हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख, कोकिलवारा औरई ज़िला मुजफ्फरपुर से फैसल शेख, नुजहत जहाँ नाज, शेखटोली समस्तीपुर से मोहम्मद शाहनवाज परवेज और मुसर्रत जहाँ नाज। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर लीजिए ये प्रस्तुत है ये वाला गीत।

राजेश रोशन का संगीत, जावेद अख्तर के लिखे बोल, उदित नारायण की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म पापा कहते हैं से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में, जिसकी फरमाइश हमें मिली है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। लिखने वाले श्रोता हैं अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर और ध्वनि गवाड़कर परी।

और इन्होंने फरमाइश की है गीत की जो है यादों की बारात फिल्म से। इनके अलावा एक और पत्र हमें मिला है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, पुराना तालाब डोमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सहारनपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्ल्यू अंसारी, जेल रोड बक्सर से नरेंद्र कुमार यादव, छटिया पोखरा डोमराव से सुनील कुमार वर्मा, मुस्तफ़ाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

आर डी बर्मन का संगीत मजरूह के लिखे बोल, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म यादों की बारात से। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का और अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म बैराग से, आवाज़ है लता मंगेशकर की और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है धामड़ी मानोरा जलाबाशिम से। लिखने वाले श्रोता हैं पेंटर तुलसीराम डेरे, माया डेरे, संदेश पेंटर डेरे, प्रज्वल डेरे, अनुजा डेरे, गुलशन और अमोल डेरे। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हमें लिखा है हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मीका विरक ने। आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

कल्याण जी आनंद जी का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म बैराग से। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाएंगे गीत किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म खुशबू से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है ग्राम महेशवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर की तरफ से। इसके अलावा पटेल नगर मलोट पंजाब से हमें लिखा है रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

धनंजय, गायत्री धनंजय, इनका पत्र हमें मिला है खंडवा ग्राम लोहारी से, और खुर्दी रोड मानपुर से हमें लिखा है विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

आर डी बर्मन का संगीत गुलजार के लिखे बोल, किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म खुशबू से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत हम आपको सुनवाएंगे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म हमजूली से, जिसे जिसकी फरमाइश की है लाबरिया भैरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और उनके पूरे परिवार ने। इसके अलावा महाराजा रेडियो श्रोता संघ से हमें लिखा है राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हमजोली से, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अभी यहीं संपन्न होता है। हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप इसी तरह अपने पत्रों को हमें भेज सकें। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी शामला हिल्स भोपाल, पिन कोड 462002। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने और सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए शर्मिला को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पदक ने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक के लिए 2 दशक लंबे इंतजार को समाप्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया है कि प्रदेश में कल गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागरिकों से स्वच्छता अपनाने और शुद्ध पेयजल तथा पानी का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हेपेटाइटिस से बचाव के लिए दूषित भोजन और पानी से बचना तथा समय पर उपचार कराना आवश्यक है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन का संकल्प लेने का आह्वान किया। और मौसम विभाग ने आज सतना, कटनी, उमरिया, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, रायसेन और बैतूल सहित 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज के सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। शाम 6:00 सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 7:21 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। संसद समीक्षा प्रसारित होगी रात 8:00। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुर्खियों में सुन सकेंगे रात 8:15 पर। रात 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम कहकशा। संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रसारित की जाएगी रात 10:00। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान DTH के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाज़ में फिल्म गुरु से।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटेस्ट ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जन कल्याण को गति देने के लिए लगभग 2,480 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की। लोकसभा ने लोक अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए चर्चा जारी की। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष जांच और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद यानी घोष ने पहली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की बैठक मंगल मिशन में भाग लिया। बैठक के बाद संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में सयानी घोष ने इस बैठक को ज्ञानवर्धक बताया और सरकार ने 10 और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट लाने के रिजर्व बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दी और सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में ई0 FIR दर्ज

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

श्रोताओं, घड़ी में बज गए हैं शाम के 5:02 और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त महिमा सक्सेना। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाओं की वाणी युववाणी में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारी सेहत से जुड़ा है और जिसके बारे में जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस की, जो हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस यानी लीवर से जुड़ी एक गंभीर बीमारी। दोस्तों, हम लोगों में से ज़्यादातर लोग तब तक डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं जब तक कोई परेशानी बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। थोड़ी थकान हो, कमज़ोरी लगे या भूख कम लगे तो हम अक्सर इसे सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार शरीर के ये छोटे छोटे संकेत हमें किसी बड़ी परेशानी के बारे में बता रहे होते हैं। इसीलिए किसी भी बीमारी के बारे में सही जानकारी होना और समय पर जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस मुख्य रूप से हमारे लीवर को प्रभावित करता है। हमारा लीवर शरीर के बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, इसीलिए उसका स्वस्थ रहना भी उतना ही ज़रूरी है। हेपेटाइटिस के कई प्रकार होते हैं और इसके लक्षण हर व्यक्ति में एक जैसे नहीं होते। कई बार तो शुरुआत में कोई खास लक्षण दिखाई भी नहीं देता, इसीलिए जागरूकता और समय पर जांच करवाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वच्छता का ध्यान रखना, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करना और किसी भी स्वास्थ्य समस्या को लंबे समय तक नज़रअंदाज ना करना, ये छोटी छोटी सावधानियाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अपनी सेहत के लिए जागरूक होना डरने की बात नहीं बल्कि समझदारी की बात है। इसलिए खुद भी जागरूक रहें और अपने परिवार को भी जागरूक करें, क्योंकि सेहत को लेकर की गई थोड़ी सी सावधानी आने वाली बड़ी परेशानी से बच सकती है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, जागरूक रहिए और स्वस्थ रहिए। दोस्तों, अब बातों का यह सिलसिला यहीं थामते हैं और अब कुछ पल संगीत के नाम करते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का पहला खूबसूरत फिल्मी गीत, फिल्म मौसम से राहत फतेह अली खान की आवाज़ में।

धरती की गोद में पलते हैं हम, हवा से सांसें लेते हैं हम, प्रकृति ने दिया है जीवन हमें, क्या उसके लिए कुछ कर सकते हैं हम? दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर हमारे आसपास पेड़ ना हो, हवा में ताजगी ना हो, पानी साफ ना हो और गर्मी हर साल पहले से ज़्यादा बढ़ती जाए तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी? शायद इस सवाल का जवाब सोचकर ही हमें समझ आ जाए कि प्रकृति हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हम रोज़ प्रकृति से कुछ ना कुछ लेते हैं, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और जीवन के लिए ज़रूरी संसाधन, लेकिन बदले में हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं? ये सवाल आज हम सभी को खुद से पूछने की ज़रूरत है। इसी जिम्मेदारी और जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आज पेड़ों की कटाई, प्रदूषण, पानी की बर्बादी और प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल प्रकृति के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं, लेकिन बदलाव की शुरुआत हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से कर सकते हैं। पानी को बेवजह बर्बाद ना करें, पेड़ पौधों की देखभाल करें, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। ये काम छोटे ज़रूर लगते हैं, लेकिन जब बहुत से लोग मिलकर इन्हें अपनाते हैं तो बड़ा बदलाव आता है। और युवाओं की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि युवा सिर्फ बदलाव की बात नहीं करते बल्कि बदलाव की शुरुआत भी कर सकते हैं। दोस्तों प्रकृति हमें सिर्फ आज के लिए नहीं मिली है, इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रकृति सुरक्षित होगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। श्रोताओं, आप सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फिल्मी गीत, फिल्म एक था टाइगर से। इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है तरन्नुम मलिक ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं विरासत का संरक्षण, समृद्धि के सृजन विषय पर। भारत अपनी समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा और कुशल कारीगरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हथकरघा बुनाई और लकड़ी की नक्काशी से लेकर कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन, चमड़े का काम, धातु शिल्प और पारंपरिक चित्रकला तक, ये शिल्प मात्र उत्पाद नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। पीढ़ियों से अनगिनत परिवार अपनी आजीविका के लिए इन पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर रहे हैं। हालांकि किफायती ऋण की सीमित उपलब्धता, पुराने उपकरणों और संस्थागत समर्थन के अभाव के कारण कई कारीगरों को आज भी वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने कई कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम NMDFC की विरासत योजना है। विरासत योजना अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, ताकि वे अपनी पारंपरिक कलाओं को संरक्षित कर सकें और साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। विरासत नाम ही इस योजना के उद्देश्य को दर्शाता है, जो भारत की समृद्ध कलात्मक परंपराओं की रक्षा करने के साथ साथ कारीगरों को बेहतर भविष्य बनाने में मदद करना है। आर्थिक तंगी के कारण इन बहुमूल्य कौशलों को लुप्त होने देने के बजाय ये योजना कारीगरों को अपने काम को आधुनिक बनाने, उत्पादन बढ़ाने और आज के बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये योजना मुख्य रूप से भारत के 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी कारीगरों को लक्षित करती है। ये उन व्यक्तियों और परिवारों के लिए है जो पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए हैं और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय NMDFC द्वारा निर्धारित पात्रता सीमा के भीतर आती है। इस पहल के माध्यम से वित्तीय सहायता उन लोगों तक पहुंचती है जिन्हें अपनी आजीविका को बढ़ाने या मजबूत करने के लिए वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। विरासत योजना की सबसे बड़ी खूबियों में से ये एक है कि ये रियायती ब्याज दरों पर किफायती ऋण प्रदान करती है। पात्र कारीगर अपनी आवश्यकताओं और पात्रता के आधार पर 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस वित्तीय सहायता का उपयोग विभिन्न उत्पादक कार्यों के लिए किया जा सकता है। कारीगर कच्चे माल, आधुनिक औजार, मशीनरी या अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक उपकरण खरीद सकते हैं। वे ऋण का उपयोग अपनी कार्यशालाओं का विस्तार करने, कार्य परिस्थितियों में सुधार करने, दैनिक व्यावसायिक खर्चों को पूरा

करने या बेहतर उत्पादन तकनीकों को अपनाने के लिए भी कर सकते हैं। इस तरह के निवेश कारीगरों को महंगे निजी साहूकारों पर निर्भर हुए बिना उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर आय अर्जित करने में मदद करते हैं। इस योजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी सरल और उधारकर्ता के अनुकूल पुनर्भुगतान संरचना है। कई छोटे कारीगर ऋण लेने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि वे ऋण तुरंत चुकाने में सक्षम नहीं होंगे। इन चिंताओं को समझते हुए NMDFC ने लचीली पुनर्भुगतान व्यवस्थाओं के साथ विरासत योजना तैयार की है। लाभार्थियों को पुनर्भुगतान शुरू होने से पहले 6 महीने की मोहलत मिलती है, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने या विस्तार करने और आय अर्जित करना शुरू करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इस अवधि के बाद ऋण को 5 वर्षों की अवधि में आसान किस्तों में चुकाया जा सकता है, क्योंकि ऋण पर साधारण ब्याज की रियायती दरें लागू होती है। इसीलिए कुल वित्तीय बोझ कई अन्य व्यावसायिक ऋणों की तुलना में काफ़ी कम रहता है। ऋण विकल्प हैं, इससे ये योजना व्यवहारिक और सुलभ बन जाती है। यहाँ तक कि सीमित वित्तीय संसाधनों वाले छोटे कारीगरों के लिए भी विरासत योजना का विशेष ध्यान महिला कारीगरों को सशक्त बनाने और प्रोत्साहित करने पर है। पूरे भारत में हजारों महिलाएं कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, हथकरघा उत्पादन, हस्तशिल्प और खाद प्रसंस्करण जैसे पारंपरिक शिल्पों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। फिर भी उनमें से कई को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की उद्यमिता और वित्तीय स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए NMDFC महिला लाभार्थियों को 1% की अतिरिक्त ब्याज छूट प्रदान करता है। इस योजना के तहत महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है, जिससे उनके लिए अपना व्यवसाय स्थापित करना या उसका विस्तार करना आसान हो जाता है। ये विशेष प्रावधान भारत के पारंपरिक शिल्पों को संरक्षित करने और साथ ही उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। विरासत योजना का एक और महत्वपूर्ण योगदान वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। कई कारीगर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं और अक्सर वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करते हैं, क्योंकि उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता या औपचारिक वित्तीय रिकॉर्ड नहीं होते। NMDFC के माध्यम से इन कारीगरों को किफ़ायती दरों पर संस्थागत ऋण प्राप्त होता है। इससे अनौपचारिक साहूकारों पर उनकी निर्भरता कम होती है और परिवार दीर्घकालिक ऋण के जाल में फंसने से बचते हैं। ये योजना भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी योगदान देती है। हर पारंपरिक शिल्प में पीढ़ियों का ज्ञान, रचनात्मकता और सांस्कृतिक पहचान समाहित होती है। जब कारीगरों को वित्तीय सहायता मिलती है तो ये आजीविका के अन्य साधनों की तलाश में इसे छोड़ने के बजाय अपने शिल्प को जारी रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होते हैं। बेहतर विकल्प, बेहतर उपकरण, बढ़ी हुई कार्यशैली, संस्थागत वित्त तक पहुंच, उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन बनाने, उत्पादन बढ़ाने और नए बाजारों में प्रवेश करने में सक्षम बनाती है। जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ता है, वे अक्सर अपने समुदाय के परिवार के सदस्यों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम होते हैं, जिससे पारंपरिक कौशल पीढ़ियों तक जीवित रहने में मदद मिलती है। ये योजना समावेशी विकास के प्रति भारत सरकार के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि आर्थिक विकास हाशिए पर पड़े समुदायों तक पहुंचे और उनके पारंपरिक व्यवसायों पर कोई असर ना पड़े। सदियों पुरानी शिल्प कलाओं को आधुनिक उद्योगों से प्रतिस्थापित करने के बजाय विरासत योजना कारीगरों को उनके पारंपरिक कौशल को समकालीन बाजारों के अनुकूल ढालने में सहायता करती है। ये न केवल व्यक्तिगत आजीविका को मजबूत करती है, बल्कि भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा भी करती है। विरासत योजना महज वित्त सहायता कार्यक्रम से कहीं अधिक है। ये एक ऐसा पहल है जो आर्थिक सशक्तिकरण को सांस्कृतिक संरक्षण के साथ जोड़ती है। किफ़ायती ऋण, लचीले पुनर्भुगतान विकल्प और महिला कारीगरों के लिए विशेष रियायतें प्रदान करके ये योजना हजारों अल्पसंख्यक शिल्पकारों को अपनी आय बढ़ाने और साथ ही सम्मानपूर्वक अपने पारंपरिक कौशल का अभ्यास जारी रखने में सक्षम बनाती है। भारत जैसे जैसे समावेशी और सतत विकास की ओर बढ़ रहा है, विरासत योजना जैसे पहले यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश की समृद्ध कलात्मक विरासत फलती फूलती रहे और इन परंपराओं को जीवित रखने वाले कारीगरों का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो। श्रोताओं, आप सुनते हैं अगला फिल्मी गीत फिल्म टशन से उदित नारायण की आवाज़ में।

उंगलियों पर सिमट गई है आज दुनिया सारी, स्क्रीन की रोशनी में खो गई है शाम हमारी। तकनीक ने जिंदगी को आसान तो बना दिया, बस खुद के लिए वक्त निकालना है अभी बाकी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम मोबाइल को सिर्फ कुछ मिनट देखने के लिए उठाते हैं, लेकिन जब उसे नीचे रखते हैं तो एक घंटा बीत चुका होता है। कभी किसी नोटिफिकेशन के लिए, कभी किसी वीडियो के लिए, और कभी बिना किसी खास वजह के हमारा काफ़ी समय स्क्रीन पर बीत जाता है। तकनीक हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सुविधा धीरे धीरे हमारी आदत बनती जा रही है? जब ज़रूरत से ज़्यादा समय डिजिटल दुनिया में बीतने लगे तो थोड़ा रुक कर सोचना ज़रूरी है कि तकनीक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं या तकनीक हमारे समय का इस्तेमाल कर रही है। इसी सोच के साथ डिजिटल मिनिमलिज्म हमें तकनीक का इस्तेमाल समझदारी से करने की बात करता है। इसका मतलब मोबाइल और इंटरनेट को छोड़ देना नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल उतना ही करना है जितना हमारे लिए ज़रूरी हो। अगर हम गैर ज़रूरी नोटिफिकेशन बंद करें, मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत के समय करें और कुछ समय स्क्रीन से दूर रहें, तो वही समय परिवार, दोस्तों, अपने शौक और खुद के लिए दिया जा सकता है। खासकर युवाओं के

संतुलन बहुत ज़रूरी है। डिजिटल दुनिया सीखने और आगे बढ़ने का शानदार माध्यम है, लेकिन हमारी असली ज़िंदगी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए, तकनीक से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ज़रूरी है कि तकनीक हमारी ज़िंदगी को आसान बनाए, हमारी ज़िंदगी को अपने हिसाब से ना चलाए, मोबाइल हमारे हाथ में रहे, हमारी ज़िंदगी मोबाइल के हाथ में ना रहे। तो चलिए फिर डिजिटल दुनिया से थोड़ा सा ब्रेक लेकर चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा फिल्म 30 मार खां से अभिजीत सावंत और प्रजक्ता शुक्रे की आवाज़ में।

श्रोताओं, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बातों का सिलसिला अब यहीं थामते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नई बातें और नए विचार लेकर। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त यानी मुझे महिमा सक्सेना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी भोपाल के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: हेलो
5: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
4: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।

0: दस लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
0: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। सर,
1: 2 लाख
2: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
1: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5:33 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान की आवाज़ में कौसार मुनीर का लिखा यह गीत फिल्म धूम 3 से। इसे संगीत दिया है जूलियस पैगजैम जोशीले ने।

शिराज उपल और जसविंदर सिंह की आवाज़ों में आइए सुनते हैं फिल्म रांझणा का गीत। इरशाद कामिल के लिखे बोलों को संगीत दिया है AR रहमान ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। अभी आप सुन रहे थे फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो का गीत। आतिफ असलम और चिन्मय श्रीपदा की आवाज़ों में इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया था प्रीतम ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं फिल्म लुटेरा से। मोनाली ठाकुर की आवाज़, अमिताभ भट्टाचार्य की शब्द रचना और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा से। जावेद बशीर के गाए इस गीत को लिखा है रजत अरोरा ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

है दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से कभी खुदा से कभी जमाने से लड़ा है इतना।

0: श्रोताओं, फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के इस गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी

0: सी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की एक खास खबरें।
3: लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए चर्चा जारी, राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जन कल्याण को गति देने के लिए लगभग 2480 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई। इस साल गुरु पूर्णिमा पर 29 जुलाई को पूरे मध्य प्रदेश में महर्षि सांदीपनी गुरु पर्व का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों में गुरु पूजन, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम, छात्र शिक्षक संवाद और भारतीय गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित विविध गतिविधियां आयोजित होंगी। और घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए, सेंसेक्स 70 अंक नीचे आकर 76,766 पर पहुंच गया है, जबकि निफ्टी 11 अंक फिसलकर 23,985 पर आ गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
1: और राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
1: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में आपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
2: सुंदर प्यारा गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
1: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं, जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा

0: मिलेगी
1: जी।
0: इस क्रम में श्रोताओं आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
1: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
0: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
1: बिल्कुल।
0: एक बार की बात है किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
1: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
0: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं।
1: जी।
0: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गंवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
1: श्रोताओं इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
0: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है।
1: जी श्रोताओं एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
0: आज के युग में श्रोताओं सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है।
1: जी
0: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
1: श्रोताओं आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: जी श्रोताओं मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
1: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना।
0: जी तो श्रोताओं अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
0: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT Books PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
1: NCERT की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: आज श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है।

0: हाँ तो बच्चों बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता, तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता, तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
4: दीदी, ये तो एकदम बुद्धू है।
2: दीदी दीदी, ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब, मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता, बताओ बेटा, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो।
0: हाँ बोलो।
3: दीदी।
0: बोलो लता, क्या बात है?
5: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती? उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
6: नमस्ते बहन जी।
7: नमस्ते।
6: नमस्ते बहन जी।
8: नमस्ते शिखा।
0: अरे दीदी जी, आप
8: आइए आइए।
0: नमस्ते बहन जी।
8: नमस्ते, यहाँ बैठिए
0: जी,
8: यहाँ। आज कैसे गरीबों के घर आपने।
0: अरे बहन जी, कैसी बात कहती हैं आप, मैं तो कई दिन से सोच रही थी आज

0: निकाल पाई समय?
1: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
0: हाँ ये तो है।
1: अरे लो, लता के बापू भी आ गए।
0: राम राम दादा।
2: हाँ,
0: कैसे हैं आप?
2: राम राम। अरे आप यहाँ? लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला। इतनी बड़ी धींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
0: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
2: अरे बहन जी, ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
0: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
2: अच्छी? और ये छोरी, मुंह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
0: अरे लता, आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो, यहाँ यहाँ बैठो मेरे पास।
3: जी, जी, जी।
2: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी, आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
0: जी।
4: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी मां भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
0: अच्छा बच्चों, ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है?
5: दीदी लता, दीदी लता।
0: लता?
6: जी दीदी।
0: क्या ये लता?
6: जी दीदी।
0: अरे नहीं।
6: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
0: अच्छा,
6: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था। हम सब उसे पकड़ने दौड़े, पर बछड़ा दौड़ता गया, सारे थक गए, पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
0: अच्छा
6: जी दीदी।
0: लता, ये सच है क्या? अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भारी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वाह रे पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने। हाँ
2: बापू, मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो? मैं पगली नहीं हूँ।
1: देखा, इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है, ठीक?
3: हाँ। नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही हैं बेटी से?
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
3: हाँ दादा, और खास कर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा, आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं, इसमें हमने क्या ध्यान देना है? आपने ध्यान देना है वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं?
1: हाँ बिल्कुल।
3: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, कर सकता है भला?
1: नहीं जी नहीं।
3: तो दादा, अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी मैं क्या करूं? देखो इसकी किताबें वर्दी।
3: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी।
3: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा?
1: वो
3: अब देखिए ना,

0: इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है?
0: दादा, कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: हैं?
0: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
1: हो
0: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
0: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
1: जी
0: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
1: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े ही हूँ, बाप हूँ बाप।
0: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।
2: उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी न रखें।

0: ये क्या मतलब है लता, तुम तो हर बार मुझे ही सबसे पहले चोर बना देती हो।
1: मैं क्या करूं, तू डरते इतना धीरे है।
0: भाई
1: अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
2: हाँ हाँ
1: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
2: अच्छा
1: उसके सचमुच के बाल है।
2: ओहो
1: और एक कंघी भी है।
2: अरे सच, फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
1: ठीक है।
0: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूं।
2: ठीक है आ जाना।
0: अच्छा
1: मैं भी आ जाऊं लता।
2: हाँ हाँ
0: मैं भी आ जाऊं लता।
1: हाँ हाँ तुम भी आ जाना।
3: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आपने सुना NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम। आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। श्रोताओं, चित्रपट संगीत में सबसे पहले आइए सुनते हैं जसपिंदर नरूला और सोनू निगम की आवाज़ में यह गीत फिल्म सोल्जर से। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है अन्नू मलिक ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है दुल्हन हम ले जाएंगे। इस गीत को लिखा है सुधाकर शर्मा ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म कुली नंबर वन से। चंदना दीक्षित और अभिजीत की आवाज़ें हैं और समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

श्रोताओं, फिल्म हीरो नंबर वन का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में। इस गीत को शब्द दिए थे समीर ने और संगीत था आनंद मिलिंद का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं फिल्म दिल तो पागल है से। आशा भोसले की आवाज़, आनंद बख्शी के लिखे बोल और संगीत दिया है उत्तम सिंह ने।

0: श्रोताओं, फिल्म दिल तो पागल है के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता न होने देने के संकल्प की पुष्टि करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुनिश्चित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सरकार ने इस साल 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर हर सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर

0: जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इस रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य को असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की वृद्धि हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। चीन में ISF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं, आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर योगेंद्र सिंह की भेंटवार्ता, विषय होगा नींबू वर्गीय पौधों का प्रबंधन। रात्रि 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए संसद समीक्षा। 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में और फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:30 और रात्रि 10:00। उर्दू कार्यक्रम कहकशां का प्रसारण 9:30 पर होगा और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज सुनिए पंडित आस्करण शर्मा का यमन राग पर ख्याल गायन। श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी बुधवार 29 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। सुबह की खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे सुबह 8:30 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे दीपाली चैटर्जी का भजन गायन। 9:30 पर सुनिए प्रदेश की ये सुर्खियों में। सुबह 10:05 का समय होगा कार्यक्रम महिला संसार का और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आप सुनेंगे समरजीत सिंह का सितार वादन। राग होगा विलास खानी तोड़ी। इसका प्रसारण सुबह 10:30 पर किया जाएगा। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत होगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने सुबह 11:00। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण दोपहर 12:00 और 2:30 पर होगा।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक कामिनी काय कांतारे का 14वां भाग आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 बजे सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान से प्रसारित होंगे। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2 बजे, शाम 5:33, 6:30 और रात्रि 8:30 पर। शाम 6 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर होगा। इसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे जैव उर्वरक से उन्नत कृषि उत्पादन विषय पर डॉक्टर गोविंद गुप्ता की भेंटवार्ता। रात्रि 8 बजे सुनिए संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। कार्यक्रम चर्चा का विषय है का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। और संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे, जिसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। श्रोताओं, ये थे कल यानी 29 जुलाई 2025 बुधवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट ने आज लगभग 2480 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शन से जुड़े गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले नाबालिग छात्रों की रिहाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के नवनिर्मित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। नियमित रेल सेवाएं शुरू। और प्रदेश भर में कल गुरु पूर्णिमा पर महर्षि सांदीपनी गुरु पर्व मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों के लिए लगभग 2480 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि अक्टूबर 2026 में भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के लिए 18,74,00,000 रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।
1: महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन भी भोपाल में अक्टूबर नवंबर में होने जा रहा है। इसमें एशिया की 6 प्रमुख महिला टीमें जिनमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड, इनके 200 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और ये नाथू बरखेड़ा में जो नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें ये होने जा रहा है। इसमें लगभग 18 करोड़ रुपए के आसपास की राशि खर्च होगी। वित्त विभाग के द्वारा इसके लिए सहमति भी दे दी गई।
0: श्री सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने आईटी पार्क स्थापना योजना के लिए 595 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिससे 8,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। साथ ही कैबिनेट ने रिहंद और मलारगढ़ सिंचाई परियोजनाओं, आईटी

0: पार्कों की निरंतरता, महिला सशक्तिकरण, ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस भुगतान योजना सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 साल से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की है। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करता है। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान, 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में 9 विकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही स्टेशन से नियमित यात्री रेल सेवाएं शुरू हो गई हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया।
1: 12 साल में जो हुआ वो भूतो न भविष्यति। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय चल रहा है, अब रेल के अंदर जिस गति से काम चल रहा है, दिल्ली तरफ से उज्जैन इंदौर जाने के लिए अगर कोई ट्रेन आएगी तो उसको इंजन बदलने की जरूरत नहीं, वो सीधे सीधे जा सकेगी। आज से जो सौगात मिल रही है, सोमनाथ वेरावल एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस,
0: मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस का ठहराव अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। इससे भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव कम होगा और करोन, निषादपुरा, छोला, भानपुर, अयोध्या, बाईपास और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को आधुनिक और अधिक सुविधा मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अपने 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष पुस्तक विमोचन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में उनका आगमन उनके व्यक्तिगत सपनों से भी कहीं अधिक था। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में उन्होंने युवाओं को नैतिक मूल्यों में दृढ़ रखने और राष्ट्र और तथा समाज की प्रगति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में राज्य पर्यटन विकास निगम की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में होमस्टे को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन, वन और संस्कृति विभाग के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने भगोरिया उत्सव का राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर मार्ग सुविधा केन्द्रों के साथ अस्पताल, पेट्रोल पंप और चार्जिंग स्टेशन विकसित करने तथा कांवड़ यात्रा मार्ग पर प्रत्येक 15 से 20 किलोमीटर पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन, प्रसादी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कल पूरे प्रदेश में महर्षि सांदीपनी गुरु पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गुरु पूजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारतीय गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी ने बताया कि इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना की भी शुरुआत होगी, जिसके तहत 102 मेधावी छात्र छात्राओं को 1-1 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। खंडवा में श्री धूनी वाले दादाजी दरबार में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज से प्रारंभ हो गया है। पहले दिन से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 30 जुलाई तक लगभग 4 लाख श्रद्धालुओं के खंडवा पहुंचने का अनुमान है। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया।

0: इस वर्ष हमारे गुरु पूर्णिमा का अवसर और विशेष है क्योंकि इस बार दादाजी के मार्बल के मंदिर का नव निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। वही व्यवस्था जो हर साल होती है इस साल भी रखी गई है। साथ में पुलिस प्रशासन मैजिस्ट्रेट सबके सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार की ट्रैफिक की अव्यवस्था ना हो, क्राउड का कोई इशू ना आए और जो भी हमारे भंडारे हैं वो स्मूथली पूरे शहर भर में चलते रहें।
1: और अब बात मौसम की। प्रदेश में कल भी मॉनसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर और सागर संभाग सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद परिवार सम्मान समारोह का गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। नीमच में संचालित दस्तक अभियान के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की समीक्षा की गई। देवास जिले के सोनकच्छ में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कटनी में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार 31 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। और शिवपुरी जिले के शासकीय अनुदान प्राप्त तथा अशासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ग्राम सभा सुनने भरे हमारे सभी श्रोता भैया बहन को नए स्टूडियो से पहुंच जावे आपकी अपनी अंशुबहन की नेह और स्नेह भरी राम राम। बसकारो माने चहुं और हरियारी, प्रकृति ऐसी जान पड़त है मानो कोनो हरो पिछोड़ा ओढ़ के पूरे आसमान पे पूरी धरती पे छा गई है। आँखन खो जब प्रकृति खूब लुभात है, मन खो खूब भात है, मनो कहूँ ना कहूँ हमारी गलतियन से, हमारी नादानियन से, विकास की अंधी दौड़ से ये प्रकृति को अस्तित्व खतरा में जान पड़ रहा है। अब भैया बिना हरो पानू हवा भोजन जीवनदायिनी चीज़ें हमें प्रकृति से ही मिलत हैं और बिना कछु बदले में मांगे प्रकृति हमें उड़ेल उड़ेल के सब कछु देत है। बस प्रकृति के संरक्षण के लाने, इखों बचावे के लाने हमें इकी परवाह करवे की बहुत ही आवश्यकता है। जैसे पानू खो बिना मतलब ना बगराओ, भोजन खो बर्बाद ना करो, पेड़न खो कटवे से बचाओ, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचो, बिजली खो व्यर्थ ना जलाओ, अपनी छोटी मोटी आदतन में सुधार करके हम बड़ो योगदान दे सकते हैं प्रकृति खो बचावे के लाने, जो हमारी भावी पीढ़ियन के लाने बहुत ही बड़ो उपहार हुई है।

0: से प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति है तो जीवन है। तो जब बहुत बड़ो बहुत बड़ी बात आज आपरण से हम ऐसे कर रहे हैं, कैसे आज है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। दूसरी एक और बात भैया हरो जरूरी आपरण से हम करन चाहते हैं, बजा के मानव शरीर को एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होते यकृत, जी हम लीवर भी कहते हैं, जो पाचन क्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जब लीवर में सूजन आ जाते हैं, जो कि खान पान में असावधानी बरतवे से, स्वच्छता में लापरवाही करवे से होते हैं। हेपेटाइटिस मुख्यतः 5 प्रकार को होते हैं। कैसे आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है, सो हम ई बीमारी के बारे में आप और अंखों कछु जानकारी देन चाहते हैं, जिसे हमारे भैया बिन्ना हरे ई बीमारी के प्रति जागरूक होवे और अपने आप को बचाव करें। सो हम कह रहे थे कि 5 प्रकार को होते हैं, जो ए बी सी डी और ई हेपेटाइटिस के प्रकार हैं जी भैया। ई में बी और सी सबसे ज़्यादा गंभीर होते हैं। इसे बचवे के लाने समय पर टीका लगवावो जरूरी है। साफ पानी और स्वच्छ भोजन करवो बहुत ही जरूरी है। सिरिंज या रक्त चढ़ात वक्त पूरी सावधानी बरतवो जरूरी है। समय पर जांच और सही इलाज से ई बीमारी से पूरी तरह से बचो जा सकत है। आज 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनावे के पाछू जन जन को जागरूक करवो और इकी रोकथाम करवो मुख्य उद्देश्य है। तो ये आज की 2 जरूरी चर्चाएं हैं जो हमने आपसे करी। संगे संगे भैया हरो बस कारो लगो है, सो हम चा बात सोई आपोरन से कहन चाहूत हैं के स्वच्छ पानी पीवे कलाने आपोरन को पानी को उबालने हैं, इतो उबालने हैं कि उसमें अगर कोनो गंदगी या कोनो बैक्टीरिया शामिल हो गए हैं, सुबह एक टेम्परेचर पे आके, एक तापमान पे आके खोलत भाई पानी में वे मर जाते हैं। सो अपन को स्वच्छ पानी को उपयोग करने हैं, जिससे अपन हेपेटाइटिस का कोनो भी बीमारी से बच सकते हैं। संगे संगे जब भोजन करने हैं, सो अपने हाथन को अच्छे से धोने हैं साबुन से, और साफ हाथ धोकें उई के बाद अपन को भोजन लेने हैं। तो भैया और जे तो हो गई साफ और स्वच्छता की बातें। संगे संगे खेती हारी के अपन के काम होते हैं, खेती किसानी के, सो उमें भी अपने अपने आप को जहरीले कीड़ा से ही बचाओ रखने, कैसे ई बेरा खूब जहरीले कीड़ा निकलत हैं, तो अपन को ई तरह की बातों को ध्यान रख के अपने आप को ध्यान रखने हैं। जा तो हो गई अंशुबेन की सलाह ग्राम सभा के माध्यम से, और अब हो रही है बुंदेली समाचारन की प्रिया।
1: बुंदेली समाचार।
0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में संपन्न भई। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जन कल्याण को गति देवे के लाने लगभग 2480 करोड़ रुपया की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। बैठक में खेल गतिविधियां, सिंचाई, महिला सशक्तिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और किसान कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयन पर मोहर लगाई गई। प्रमुख निर्णयन में अक्टूबर 2026 में भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के भव्य आयोजन के लाने 18,74,00,000 रुपया की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई, जिसे राज्य की खेल अवसंरचना और पर्यटन को वैश्विक पहचान मिल है। कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करवे के लाने रिहंद एवं मल्हारगढ़ सिंचाई परियोजनाओं और किसानन को समर्थन मूल्य पे बोनस भुगतान योजना की निरंतरता को मंजूरी सोई मिली। प्रदेश को तकनीकी रूप से अग्रणी बनावे के उद्देश्य से IISIR भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और IT पार्कन के विकास के लाने 857 करोड़ रुपया स्वीकृत करे गए हैं। इन निर्णय में IT पार्क की स्थापना के वर्ष 2031 तक संचालन की निरंतरता को स्वीकृति महत्वपूर्ण है। इसके तहत करीब 8,000 युवाओं को रोजगार मिल है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लाने 198 करोड़ रुपया, कर्मचारी कल्याण एवं पेंशन योजनाओं के लाने 982 करोड़ रुपया और ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा के निरीक्षकालय के नवीन वृत्त कार्यालय और नारायणगढ़ में 9 नए न्यायिक पदन के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान करी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदन से मुलाकात करी और राज्य के विभिन्न हिस्सन में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करी। सोशल मीडिया पोस्ट पे जानकारी साझा करते भय प्रधानमंत्री ने कही कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता

0: तकला ने असम सरकार के संग मिलकर काम कर रही है और नसवी की सुरक्षा की कामना करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलन में महिला शॉट पुट एफ 57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतवे और सत्र को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवे कला ने शर्मिला को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कही, ई पदक ने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक केला ने 2 दशक लंबे इंतजार को समाप्त करो है। उनने पुरुषन के 79 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतवे पर बलूरी अजय बाबू को भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कही कि भारोत्तोलक ने स्नैच स्पर्धा में 9-1 रिकॉर्ड अपने नाम करो है। श्री मोदी ने पुरुषन की ऊंची कूद की स्पर्धा में रजत पदक जीते हुए किला ने सर्वेश अनिल कोशारी को भी बधाई दी है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागरिकन से स्वच्छता अपनावे और शुद्ध भोजन तथा पानी को उपयोग करवे की अपील करी है। उन्होंने कही कि हेपेटाइटिस से बचाव के लाने दूषित भोजन और पानी से बचवो तथा समय पे उपचार करावो आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने लोगों से ई बीमारी के प्रति जागरूकता फैलावे और दूसरों को भी आवश्यक सावधानियां अपनावे के लाने प्रेरित करवे को आग्रह करो है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उनने सभी नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन के संवर्धन को संकल्प लेवे को आह्वान करो है। मुख्यमंत्री ने कही कि प्रकृति को संरक्षण आवे वाली पीढ़ियों के सुरक्षित स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की मजबूत नींव है। ई वर्ष गुरु पूर्णिमा पे काल 29 जुलाई को पूरे मध्य प्रदेश में महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व को भव्य आयोजन करो जा रहा है। ई अवसर पे प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में गुरु पूजन, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम, छात्र शिक्षक संवाद तथा भारतीय गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित विविध गतिविधियों को आयोजन करो जे है। खंडवा में श्री धोनी वाले दादाजी दरबार में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव को आज से शुभारंभ हो गया है। पहले दिन से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आवे को सिलसिला शुरू हो गया है। 30 जुलाई तक लगभग 4 लाख श्रद्धालुओं के खंडवा पहुंचवे को अनुमान है। प्रदेश में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने सतना, कटनी, उमरिया, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, रायसेन और बैतूल सहित 8 जिलों में भारी बारिश को अलर्ट जारी करो है। विभाग के अनुसार 28 से 30 जुलाई के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। नागरिकों से मौसम संबंधी चेतावनियों को पालन करने की अपील करी गई है। जी हते आज के बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: भैयारो अंतराल के बाद कार्यक्रम में वापस आते हैं और अब सुन लेते हैं एक देवी गीत। जी ये गाँव है अर्चना खरे ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भैयारो, अंतराल के बाद कार्यक्रम में वापस आते हैं। जैसे कि आप और जानते ही हो भैयारो कि कोनो भी फसल को अगर प्रबंधन सही तरीका से ना करो जे है तो वह फसल हमें वो उत्पादन नहीं दे पाते जी के हम हकदार होते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे विषय लेके आए हैं अपनी अगली भेंटवार्ता में। विषय है नींबू वर्गीय पौधों का प्रबंधन। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह और इनसे बातचीत करिए हमारी पूनम सरावगी बहन ने। तो सुनते हैं जब महत्वपूर्ण जानकारी।
3: नींबू वर्गीय पौधों यानी कि संतरा, नींबू, माल्टा आदि का बेहतर प्रबंधन करने के लिए अच्छे जल निकास, नियमित सिंचाई, संतुलित खाद जो कि नाइट्रोजन युक्त हो और समय पर कटाई छटाई का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। फलों के बेहतर विकास के लिए इन्हें उचित तापमान और जैविक देखभाल की आवश्यकता भी होती है। इन पौधों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, इसी संबंध में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर योगेंद्र सिंह को। आप सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में।
4: थैंक यू मैम
3: जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी वर्तमान मॉनसून के मौसम में नींबू वर्गीय बागों में सबसे पहला कार्य हमें क्या करना चाहिए।
4: मैम वर्षा ऋतु के मौसम में क्या है कि बारिश होती है तो उससे क्या है कि बागों में क्या होता है जल भरने की समस्या रहती है।
3: जी जी।
4: तो जल भर गया पौधों में तो उससे क्या होता है कि मतलब जड़ सड़न हो जाती है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती रहती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि बारिश के मौसम में कभी भी बागों में पानी रुकने नहीं दिया जाए, उनको समय समय पर निकाल दिया जाए, क्योंकि पानी भरने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जड़ सड़न रोग

0: उत्पन्न हो जाता है और गमोसिस हो जाता है और अन्य मृदा जनित रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए नालियों को नियमित सफाई करें तथा अतिरिक्त पानी की शीघ्र निकासी सुनिश्चित करें। यही मानकर मैं नींबू वर्गीय बागों के सफल प्रबंधन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताता हूँ।
1: बड़ी अच्छी बात आपने बताई हमारे श्रोताओं को। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस समय पौधों को कौन सी नई वृद्धि दिखाई देती है?
0: मानसून के दौरान नींबू वर्गीय पौधों में नई कोमल शाखाएं में आती हैं
1: जी।
0: और नई पत्तियों का निकलती हैं। यही पत्तियां जो नई ग्रोथ होती है, जो क्या है कि आगे फलन का कारण बनती हैं। तो हमें क्या करना है, इन नई ग्रोथ को अच्छे से रखरखाव करना है और प्रॉपर पोषक तत्व प्रदान करने हैं, जल निकास की उचित व्यवस्था करनी है, जिससे कि हमारा उत्पादन अधिक हो सके।
1: जी जी, मानसून में पोषण प्रबंधन और जैविक खाद का प्रयोग कैसे किया जाता है?
0: मैम, इसके लिए अपन को क्या करना है कि अपन जितनी जैविक खाद आते हैं, जो बारिश होने से पहले अपन को बेसिन बना करके उनमें दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर नाइट्रोजन का, पोटास का, फास्फोरस का मात्र बढ़ जाता है और इससे क्या है, पोषक तत्व बढ़ने से अच्छी वृद्धि होगी और वृद्धि होने से क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है।
1: जी सर, ये बताइए कि नींबू वर्गीय फसलों में जैविक उर्वरकों का क्या महत्व है?
0: मैम, जैव उर्वरक मिट्टी के उर्वरक शक्ति बढ़ाते हैं।
1: जी जी,
0: ठीक है। और ये क्या है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जल धारण क्षमता होती है, उसको इंक्रीज करते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे की वृद्धि अच्छी होगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य अच्छे होने से क्या होता है, फ्रूट सेटिंग, जिसको फल धारण बोलते हैं, वो अधिक होगा
1: जी।
0: और अधिक होने से क्या होता है कि अपनी उत्पादकता बढ़ जाती है
1: जी।
0: और ये जो जितने भी जैव उर्वरक रहते हैं, जो अपने नाइट्रोजन फिक्सेशन, फास्फोरस फिक्सेशन करने का काम करते हैं
1: जी जी,
0: और मृदा की उर्वर शक्ति को बढ़ाते हैं
1: जी। बड़ी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सर, ये बताइए कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव हमें कब और कैसे करना चाहिए?
0: मैं सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव हमें सुबह या शाम के टाइम करना चाहिए, क्योंकि अगर अपन ने, और इसमें क्या रहता है कि दिन मतलब बिल्कुल साफ सुथरा मौसम होना चाहिए। अगर थोड़ी सी बारिश होगी ना, तो प्लांट जो होते हैं, जो पोषक तत्वों को मतलब ग्रहण नहीं कर पाएंगे, इससे क्या है, वेस्ट चले जाएंगे। तो इसलिए हमें रखना है कि हवा भी ज्यादा नहीं चलनी हो रही हो, बारिश का मौसम ना हो, ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी होने से भी क्या होता है कि डिजीज का प्रकोप बढ़ जाता है, तो इसलिए हमें सुबह शाम खुले मौसम में ही करना चाहिए
1: जी। एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमें खरपतवार का नियंत्रण क्यों आवश्यक है, इनमें क्यों करना चाहिए?
0: मैं खरपतवार जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि अपने स्थान के लिए, पोषक तत्वों के लिए, वाटर के लिए, और ये आपस में स्पर्शता करते हैं प्लांट से, और ये क्या है कि बहुत सारे इंसेक्ट को, यानी कीट को और रोगों को सहारा देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें बीमारी फैल जाती है, वो बीमारी फैलने से क्या होता है, उत्पादन कम हो जाता है
1: जी।
0: तो इसलिए हमें खरपतवार को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। इसके लिए हम खुरपी की सहायता से निकाल सकते हैं, हैंड होइंग कर सकते हैं और हर्बिसाइड का भी यूज कर सकते हैं
1: जी। एक और बात मेरे जहन में आ रही है कि मल्चिंग का इस समय क्या महत्व होता है?
0: मैं मल्चिंग बहुत बड़ा महत्व है प्लांट के अंदर, क्योंकि मल्च क्या होता है कि एक बाहरी आवरण बिछाया जाता है, जिससे क्या होता है कि मृदा का जो नमी होती है और खरपतवार को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। इससे क्या है कि नमी अच्छी मिलने से प्लांट की अच्छी वृद्धि होगी और वृद्धि होने से अपना उत्पादन बढ़ जाता है
1: जी।
0: तो इसलिए हमें मल्चिंग का उपयोग करना चाहिए।
1: एक और बात मैं जानना चाहती हूँ, क्या इस समय हमें कटाई छटाई करनी चाहिए पेड़ों की?
0: हाँ मैम, हल्की फुल्की अपन कटाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी नई जो ग्रोथ आती है उसको अपन ध्यान में रखते हुए, जैसे पुरानी ब्रांचेज हैं या टूटी हुई ब्रांचेज हैं, उनको अपन निकाल सकते हैं। वो हल्की हल्की, जैसे पत्तियों में डिजीज आ गया हो या कोई इंसेक्ट लग गया हो, उन पत्तियों को अपन निकाल सकते हैं
1: जी जी। सर, ये बताइए सकर्स को क्यों हटाना चाहिए?
0: मैम, सकर्स क्या होते हैं, प्लांट्स के जो नीचे वाला भाग होता है उसमें निकलते हैं। ये क्या करते हैं कि वेस्ट जो फर्टिलाइजर होता है, उर्वरक होता है, उसका अवशोषण करते हैं, जिससे प्लांट में जो जाना चाहिए वो नहीं पर्याप्त मात्रा में जा पाता है
1: जी जी।
0: तो इसलिए इनका कोई उसमें महत्व नहीं रहता है प्लांट में, तो इनको समय समय पर निकाल देना चाहिए, जिससे अपने प्लांट की अच्छी वृद्धि होगी और वृद्धि होने से अच्छा उत्पादन होगा
1: जी। एक और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है जो हमारे सभी किसान श्रोता जानना चाहेंगे कि वर्तमान मौसम में, मानसून के मौसम में, कद्दू वर्गीय फसलों के प्रमुख कीट और रोग कौन कौन से हैं और उनको कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं?
0: मैम, इस मौसम के प्रमुख कीट हैं अपने साइट्रस साइला, लीफ माइनर, एफिड, व्हाइट फ्लाई एवं स्केल कीट हैं। जबकि प्रमुख रोग हैं गमोसिस, सिट्रस कैंकर, जड़ सघन रोग एवं एंथ्रेक्नोज, ये प्रमुख रोग हैं। इनका प्रबंधन अपन को स्ट्रिप लगाकर कर सकते हैं, जो येलो स्ट्रिप आता है ये इसको अट्रैक्ट करता है। इससे क्या होता है, जो कीट होते हैं जो इस पे आके बैठ जाते हैं, उससे उनकी कम हो जाती है संख्या,
1: चिपक के
0: रह जाते हैं और उससे कंट्रोल आसान हो जाता है। और दूसरा यह है कि अपन को जहाँ जो कीट आ गया है या इंसेक्ट आ गया है, उनको ब्रांचों को निकाल देना चाहिए, ठीक है। और अधिक मात्रा में होने पर अपन फंजीसाइड का इंसेक्ट सर कई प्रकार कर सकते हैं
1: जी। एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सिट्रस ग्रीनिंग रोग से हम अपने नींबू वर्गीय पौधों का बचाव कैसे कर सकते हैं?
0: तो रोग युक्त जो ब्रांचेज होती हैं, उनको क्या करना है, हमें निकाल देना है, या फल को, जहाँ भी हमें लक्षण दिख रहे हैं इसके, उस फल को, उस ब्रांचेज को निकाल

0: देना है और हमें फंजीसाइड का भी उसको प्रयोग कर सकते हैं
1: जी,
0: इस रोग को नियंत्रण करने के लिए।
1: जी, एक और रोग आमतौर पर नींबू में देखने को मिलता है, सिट्रस कैंकर। इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं?
0: इस रोग के प्रमुख लक्षण पत्तियों पे, टहनियों पे, फलों में आते हैं। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, उभरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। रोग बढ़ने पर पत्तियां एवं फल समय से पहले गिर जाते हैं।
1: जी, तो इसका हम कैसे निकाल कर सकते हैं?
0: इसका वही है मैडम, अपने जो रोग मुक्त फल हैं उनको अपना रोग युक्त जो उनको अपन निकाल देना चाहिए, पत्तियां हटा देनी चाहिए, ब्रांचेज हैं उनको भी हटा सकते हैं, ठीक है, और अपन फंजीसाइड का प्रयोग करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी, एक और रोग देखने को मिलता है, गमोसिस। इससे हम अपने नींबू वर्गीय पौधों को कैसे बचा सकते हैं?
0: मैम, ये बहुत ही मतलब खतरनाक रोग है। वो ये क्या है, मोस्टली जब बाग में जल भरने से होता है, इसको जड़ सड़न लोग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पानी भर जाने से जो प्लांट्स की जड़ होती है वो ऑक्सीजन कमी हो जाती है, जिससे सड़ना शुरू हो जाती है। तो इस कारण से होता है, तो हमें क्या करना है कि पानी कभी बगीचे में ठहरना नहीं चाहिए, उनको समय समय पर निकाल देना चाहिए।
1: सिट्रस कैंकर और एंथ्रेनोज रोग जो होता है, उसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं?
0: मैम, इसमें क्या है, जो संक्रमित शाखाएं फल हैं हटाकर नष्ट करें, वर्षा के अंतराल में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करें 0.3%
1: जी,
0: और इसका छिड़काव करने से ये कंट्रोल हो जाता है।
1: बिल्कुल, बड़ी अच्छी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं। सर, ये बताइए, नींबू वर्गीय फसलों में फल झड़ने की समस्या क्यों होती है और इसका हम कैसे निदान कर सकते हैं?
0: मैम, इसका मुख्य कारण होता है पोषक तत्वों की कमी, नमी का असंतुलन, प्रतिकूल मौसम या कोई कीट या रोग का अटैक हो जाना, ठीक है, इससे क्या है फल झड़ जाते हैं। तो इनके निवारण के लिए हमें क्या करना है, अपन को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा प्लांट को देना है,
1: जी,
0: ठीक है, और अपन का स्प्रे करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, प्लांट को न्यूट्रिएंट मिल जाएगा तो इससे कम हो जाता है। और कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है, उनके स्प्रे करने से, जैसे एनए है, उसका करने से कंट्रोल हो जाते हैं।
1: जी जी, एक और बात मानसून के मौसम को लेकर ही है कि नींबू वर्गीय फसलों में सिंचाई का प्रबंधन हम कैसे करें, क्या इस मौसम में सिंचाई की आवश्यकता होती है?
0: इसमें हल्की फुल्की सिंचाई कर सकते हैं, अगर लंबे समय तक बारिश नहीं हो रही हो तो उस स्थिति में हम हल्की फुल्की मतलब सिंचाई कर सकते हैं। और सिंचाई करने के लिए सबसे पहले हमें ड्रिप इरिगेशन को अपनाना है। उसके दो तीन फायदे होते हैं, एक तो प्लांट को प्रॉपर पानी मिल जाता है, दूसरा क्या होता है, फर्टिलाइजर इक्वल मात्रा में जाता है जितना प्लांट को चाहिए, तीसरा क्या होता है कि इसमें फर्टिलाइजर जो सेविंग हो जाती है वो इसमें 50-70% तक पानी की बचत होती है और 20-30% अधिक उत्पादन हमें मिलता है।
1: जी,
0: उसका एक ही कारण है क्योंकि इसमें प्रॉपर मात्रा में वाटर आपको मिल जाएगा, आपको न्यूट्रिएंट पोषक तत्व मिल जाएंगे और मतलब जितना पानी चाहिए प्लांट को मिल जाएगा
1: जी,
0: तो इसलिए इसकी वृद्धि अच्छी होगी। वृद्धि अच्छी होने से इसमें फलन अच्छा होगा और फलन अच्छा होने से अपनी उत्पादकता बढ़ जाती है।
1: यानी कि मॉनसून के मौसम में भी अगर लंबे समय तक बारिश नहीं हो रही है तो हमें सिंचाई पौधों को देनी चाहिए। जी, ड्रिप सिंचाई के क्या लाभ हो सकते हैं इस फसल के संदर्भ में?
0: मैम, इसमें क्या होता है, एक तो पानी की बचत हो जाती है
1: जी,
0: ठीक है, अपना न्यूट्रिएंट बचत हो जाती है और न्यूट्रिएंट को प्रॉपर जड़ों में दिया जाता है जिससे प्लांट उसे ऑब्जर्व अच्छे से कर लेता है, ठीक है, अपना न्यूट्रिएंट वेस्ट नहीं जाता है। जैसे अपन हैंड से करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट बाहर उड़ जाता है, कुछ लीच आउट हो जाता है, तो ड्रिप से देने से क्या होता है प्रॉपर रूट में जाता है जिससे प्लांट उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है, अपनी वृद्धि अच्छे से कर पाता है।
1: जी, यानी कि पर्टिकुलर प्लांट तक हम ये ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पोषण को और जल को पहुंचा सकते हैं। जी सर, ये बताइए, मधुमक्खियों का नींबू वर्गीय फसलों में क्या महत्व होता है?
0: मैं, मधुमक्खी एक बहुत अच्छी कीट है जो कि अपने जो फल प्लांट जो होते हैं उनमें क्या आता है, पोलिनेशन जो परागण का काम करती हैं, तो जितनी मधुमक्खी अब बाग बगीचे में आएंगी उतना ही उसमें फ्रूट सेटिंग अच्छा होगा और जितना फ्रूट अच्छा होगा सेटिंग उससे उतना ही अधिक उत्पादन होगा।
1: जी,
0: तो इनका मेजर रोल होता है परागण करने में होता है।
1: आमतौर पे यदि मधुमक्खियां उपलब्ध नहीं है तो हम कैसे परागण उनमें कर सकते, कृत्रिम परागण उनमें भी कुछ उपयोग में आता है क्या?
0: कुछ इसमें पोलन गन्स आती हैं उससे भी कर सकते हैं, ये अपना डेट पाम में जो पॉसिबल है, बाकी नींबू वर्ग में इतना नहीं होता है, इसमें मधुमक्खी आ जाती है और अगर नहीं आ पा रही है तो हम इनका पालन करके 2-3 डब्बे उसके मधुमक्खियों के लगा देते हैं, इससे क्या अपना पोलिनेशन बढ़ जाता है।
1: जी जी, वर्तमान मॉनसून के मौसम में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान किन बागवानी क्रियाओं पर विशेष ध्यान दे, आप हमारे किसानों को बताइए।
0: मैम, सबसे पहला काम है अपना जल को बागों में रुकने नहीं दिया जाए, मतलब उचित जल निकास की व्यवस्था की जाए, संतुलन पोषण स्वास्थ्य नई वृद्धि का संग मतलब जो भी रोग वगैरह कीट वगैरह से मुक्त रहना चाहिए, वो आवश्यकता अनुसार पड़ने पर उनको हल्की हल्की सिंचाई देनी चाहिए, मल्चिंग का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, और समेकित कीट प्रबंधन करना चाहिए, बगीचे की स्वास्थ्य पर निगरानी करनी चाहिए, आपको बार बार आकर उसकी निगरानी करनी चाहिए कि कोई डिजीज नहीं है, कोई कीट नहीं है या पानी का कोई मॉइस्चर कंटेंट कम तो नहीं हुआ है, मॉइस्चर कंटेंट प्रॉपर है, तो इसे हमें करना चाहिए जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है।
1: यानी कि हमें प्रॉपर निगरानी पौधों के ऊपर भी रखनी होगी। सर ये बताइए नींबू में बहार प्रबंधन क्या है?
0: मैम नींबू में तीन बहार आती हैं जिनका नाम है एक मृग बहार, अम्बे बहार और हस्त बहार।

0: जी।
1: तो हमें इन पर ध्यान रखना है कि हमें कौन सी बाहर लेनी है।
0: जी जी
1: ठीक है। तो मैम जैसे अभी नींबू का जो अच्छा रेट आता है वो गर्मी में आता है, ठीक है, जिसके फल जो आते हैं हस्तवार के आते हैं, तो हमें जो अभी जो रेनी सीजन बाहर आ रही है उसको रिमूव करना होगा, तो आगे वाली को लेना होगा
0: जी।
1: अगर इस बार को लेंगे तो इसकी जो फ्रूटिंग होती है वो नवंबर अक्टूबर जनवरी तक होती है
0: जी जी
1: तो
0: जी।
1: उनका क्या होता है प्राइस घट जाता है, प्रोडक्शन अधिक हो जाता है पर लेकिन प्राइस कम मिल पाता है, तो इसलिए हमें प्रेफर करना है हस्तवार को जिसकी फरवरी मार्च में फ्रूटिंग हो जाती है और मई जून में फल लगना शुरू हो जाता है और जून जुलाई तक चलता है, तो हमें हस्तवार को प्रेफर करना है।
0: पत्तियों का पीला पड़ना नींबू के पेड़ों में क्या दर्शाता है?
1: मैम इसमें क्या होता है कि जो प्लांट में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जैसे फास्फोरस है तो येलो हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है तो उसमें हल्का सा लाइट रहता है कलर, तो इसमें मोस्टली क्या है पोषक तत्वों की कमी के कारण ये येलो हो जाती है।
0: जी जी जी
1: तो इसके लिए निवारण के लिए हमें प्रॉपर मात्रा में अपन को पोषक तत्व प्रदान करना पड़ेगा, जिसमें जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट आ गए, सूक्ष्म पोषक तत्व आ गए, आपका पोटास है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, इनका प्रॉपर हमें ध्यान देना है और ईयर के हिसाब से हमें प्रदान करना है।
0: जी, बड़ी अच्छी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं। सर ये बताइए, वर्तमान मॉनसून के मौसम में नींबू वर्गीय बागों के सफल प्रबंधन का क्या मूल मंत्र है?
1: तो वर्तमान मानसून के मतलब मूल मंत्र यही है मैडम, संतुलन पोषण देना है अपन को, जो पोषक तत्व होते हैं और नई वृद्धि का हमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी इंसेक्ट वगैरह कीट वगैरह नहीं लगे, कोई डिजीज नहीं आए, कहीं से डैमेज नहीं हो, क्योंकि जो नई ग्रोथ होती है इस मौसम में जो आती है यही भविष्य में फल का कारण बनती है। ठीक है, अगर ये ग्रोथ अच्छी रहेगी तो हमारा फल धारण जिसे फ्रूट सेटिंग बोलते हैं वो अच्छा हो जाएगा और फ्रूट सेटिंग अच्छा होने से हमारा पर हेक्टेयर उत्पादन बढ़ जाता है। तो हमें सबसे पहले अपना जल निकास पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर बागों में जल भर गया तो उसमें क्या है बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, जैसे जड़ रोग हो जाता है आपका जिसे बोलते हैं गमोसिस, और एक अपना कैंकर हो सकता है तो भी जल भरने से होता है, तो हमें प्रॉपर जल निकास पर ध्यान देना है। उसके बाद हमें खरपतवार नियंत्रण को भी करना है, खरपतवार हो जाते हैं तो ये भी बहुत सारे रोगों को कीटों को सहारा देते हैं जिससे अधिक फैलता है, तो हमें इनको भी बार बार काल देना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है कि खरपतवार बहुत ज्यादा जल्दी से पनपते हैं तो इनको हमें हटा देना चाहिए। अगर अधिक मात्रा हो जाने पर हमें हर्बिसाइड का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी करना है, जिसको बोलते हैं समग्रित कीट प्रबंधन, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, और हमें समय समय पर बाग की निगरानी करनी है, जैसे उसमें जा जाके चेक करना है कि हमारा क्या कोई इसमें रोग तो नहीं आया, कोई कीट तो नहीं लगा या कोई पानी तो नहीं भर रहा कहीं, तो प्रॉपर हमें निगरानी रखनी है।
0: चलते चलते एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहती हूँ, एक स्वस्थ नींबू के पौधे से सालाना कितनी उपज ली जा सकती है?
1: मैम इसमें क्या है कि इसमें 50 से 60 केजी पर प्लांट अपन ले सकते हैं, और इसका क्या है अपन 400 से 500 पर फ्रूट अगर पौधा अपना 8 से अधिक ईयर हो गया है तो दे सकता है, क्योंकि ग्राफ्टेड पौधे होते हैं वो क्या है 2 से 3 ईयर बाद फ्रूटिंग शुरू कर देते हैं, तो स्टार्टिंग में उनकी क्या है यील्ड कम रहती है, जैसे 20 से 30 फ्रूट आएंगे तो फिर क्या है पर ईयर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो अपन अच्छा प्रबंधन साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो इनकी पर ईयर यील्ड बढ़ती जाती है, और 8 से 10 वर्ष का जो पौधा हो जाता है उससे अपन 50 से 60 केजी पर पौधा ले सकते हैं।
0: जी जी, तो बड़ी ही अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। तो ये थे डॉक्टर योगेंद्र सिंह, आप हमें जानकारी दे रहे थे नींबू वर्गीय पौधों का प्रबंधन इस विषय पर। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बड़ी ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
2: भैया हरो, अब अपन ने जानो के नींबू वर्गीय पौधन को प्रबंधन कैसे करा जा सकत है और कैसे अच्छे से अच्छे ज्यादा से ज्यादा उपज लाई जा सकत है। ई विषय के विशेषज्ञ हते डॉक्टर योगेंद्र सिंह, और इनसे बातचीत करी हती हमारी बहन पूनम सरावगी ने। और अब ले लेते हैं एक अंतराल।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अंतराल के बाद कार्यक्रम में वापस आते हैं और सुनवा देते हैं आप और अनखों जो मीठो सो विदाई गीत जी एक गाँव है बलराम रैकवार ने।

जो बहुत ही नौ नौ सौ गाना सुनवे के बाद, लोकगीत सुनवे के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़त हैं और कछु सलाह लेके आए हैं हम कृषि संबंधित, बा आप और उनको दे देते हैं। कलकायन बडिंग हेतु उन्नत किस्म की कलियन की व्यवस्था कर विलय में भैया रहे और पुराने वृक्षण की चयनित 3 से 4 शाखाओं पे कलकायन को कार्य कर ले। संगे संगे वृक्षारोपण के लाने उन्नत किस्म के पौधन की व्यवस्था कर ले और पूर्व में तैयार गड्ढन में पौधन को रोप देवे और संगे संगे बुआई से पूर्व बीज खो सब्जियन के लाने जा सलाह है भैया रो 2.0 ग्राम थायरम एवं 1.0 ग्राम कार्बन डाइजम के प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेवे और मिर्च बैगन पालक ग्वारफली एवं कद्दू वर्गीय सब्जियन की समय पर तुड़ाई करके बाजार में विक्रय कर देवे और अंतिम पड़ाव में पहुंच गए सो कल के कार्यक्रम जल्दी से बता दें आप उनको। कल भुनसारा कृषि चर्चा में सुनियो खरीफ की फसलों में समसामयिक कार्य, इके विशेषज्ञ हैं डॉक्टर स्वप्निल दुबे और संजय बिरिया ग्राम सभा में भेंटवार्ता में सुनियो जैव उर्वरक से उन्नत कृषि उत्पादन विषय पर भेंटवार्ता और इके विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गोविंद गुप्ता। और अब बिरिया हो गई है चलवेगी सो आज्ञा दो अपनी अंशु बहन को और स्वीकारो हमारी नेह और स्नेह भरी राम राम।

ग्रामीण श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी इनकी स्थापना होगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने

लोकसभा में परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। श्री गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे इंकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा श्री प्रधान का स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसा स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। श्री गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई जबकि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृह मंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ही और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्षी दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि ये ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाए। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और यदि सरकार जेन जेड पर भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित

साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है। मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गईं। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्षी सांसदों, खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृहमंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के लिए कहा। हंगामे के बीच ही श्री मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक एमएसएमई क्षेत्र के विकास की गति को देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। श्री मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है।
उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की

इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। श्री मांझी द्वारा विधेयक पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए भारत के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
3: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया पाठक और आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। हेपेटाइटिस, जिसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि कई बार इसके लक्षण तब सामने आते हैं जब लीवर को गंभीर नुकसान पहुंच चुका होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज, टीकाकरण, डिजिटल निगरानी और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने जैसे कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर एन के अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर, हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद श्रेया।
3: डॉक्टर एन के अरोड़ा, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि आप हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में समझाइए कि हेपेटाइटिस आखिर है क्या और इसे साइलेंट किलर या साइलेंट डिजीज क्यों कहा जाता है।
4: हेपेटाइटिस का एक प्रकार है विषाणु का जो साइलेंट किलर होता है, और एक दूसरा प्रकार है जिसमें हमें स्पष्ट रूप से लक्षण दिखाई देते हैं। तो हेपेटाइटिस को याद रखना, ये वायरस डिजीज है या विषाणु की वजह से होती है, और मुख्यतः चार विषाणु है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी। डी इतना नहीं है महत्वपूर्ण, ई होता है। ए, बी, सी और फिर ई, ये चार किस्म के वायरस हैं जो हमारे जिगर को, यकृत को प्रभावित करते हैं, लिवर को, और उसमें इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है। जो हेपेटाइटिस बी और सी है, वो एक बार हमारे शरीर में, खास तौर पे जब उम्र छोटी होती है, 5 साल से कम उम्र में अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाए तो वो फिर निकलता नहीं है और वहीं पे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस सी, हम आगे बात करेंगे, एक बार शरीर में घुसता है तो बाहर जाता नहीं है, और वो हमारे लिवर के जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, उनको लगातार नुकसान पहुंचाता रहता है, डैमेज करते रहते हैं, और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे हमारा जो यकृत है, लिवर है, उसमें खराबी होती है। पहले तो हमें, अगर बहुत देर तक चलता रहे तो पीलिया हो सकता है, लेकिन कई बार पीलिया भी नहीं होता, सीधे सिरोसिस हो जाता है, यानी कि लिवर के अंदर गांठे पड़ जाती हैं, और फिर बाद में कैंसर भी हो सकता है। तो इन दो वायरसेस की वजह से जो लिवर की बीमारी होती है, हेपेटाइटिस होती है या

0: सूजन आ जाती है वो एक साइलेंट किलर का काम करती है, क्योंकि 10 से 20 साल 30 साल बाद आपको पता भी नहीं चलता है, और पता सडनली पता चलता है कि हमारा लिवर इतना खराब हो गया है कि खून की उल्टी आ रही है और उसके अंदर शरीर लिवर के अंदर गांठें हो जाती हैं और परेशानी होती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इन्हीं कुछ लोगों में से कैंसर भी हो जाता है जिसको हेपेटाइटिस सेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं। तो ये दो वायरस जो है एक तरह से हमारे लिए साइलेंट किलर है, और ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है, क्योंकि एशिया में और खास तौर पे भारत में शुरू में हमने जब ये कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था तो एक बहुत बड़ी हमारी जनसंख्या थी जिसमें हेपेटाइटिस बी सर्कुलेट करता रहता था, और
1: जी
0: ये जो हमारे हेपेटाइटिस सेलुलर कार्सिनोमा और सिरोसिस है उसका एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होता था। समय के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तो अब इसमें कमी आ गई है। दूसरा हेपेटाइटिस ए और ई, हेपेटाइटिस ए और ई स्वच्छता की कमी की वजह से होता है, चाहे वो स्वच्छता पानी की हो या स्वच्छता भोजन की हो, इन दोनों की वजह से हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है। और ये आपको जानकर एक सुखद अनुभव होगा कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम के शुरू करने से जब घर घर में जो पानी पहुंचा है, स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया, उसके बाद हेपेटाइटिस ए और ई बहुत कम हो गए, क्योंकि हमें साफ पानी मिलने लगा, भोजन में भी सफाई हो गई स्वच्छता की वजह से। वो जो हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से होता है उसमें पीलिया हो जाता है, किसी भी उम्र में हो पीलिया होता है,
1: जी
0: और आमतौर पर दवाई किसी की जरूरत नहीं होती, खाली देखभाल करनी होती है और वो ठीक हो जाते हैं। किसी किसी केस में, यानी कि 200 केसेस में एक केस ऐसा होता है जिसमें लिवर फेलियर हो सकता है और मृत्यु की संभावना बनती है,
1: जी
0: तो वो एक अलग तरीके से फैलता है। और हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो एक अलग तरीके से फैलता है, और साइलेंट किलर हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होते हैं।
1: जी मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ही रहेगा कि आज सरकार ने नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत नई ऑपरेशनल गाइडलाइंस और स्क्रीनिंग गाइडलाइंस जारी की हैं। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि इन नए दिशा निर्देशों में क्या बदलाव किए गए हैं और इनसे आम लोगों को क्या फायदा पहुंच सकता है।
0: इन गाइडलाइन में जो मुख्य इनका बिंदु है जिन पे हमें समझने की जरूरत है, और वो ये है कि 2030 तक हमें जो हेपेटाइटिस है, जो लिवर की बीमारी है, उसको बहुत हद तक खत्म करना है और कम करना है। और इसमें हेपेटाइटिस बी और सी जो एक बार शरीर में घुस जाते हैं जैसे हमने बताया और लगातार रहते हैं, तो उनकी जांच का, उनके इलाज का और साथ ही साथ उनको फॉलो करने का, ये सारे का सारा जो इस नई गाइडलाइन के अंदर है और स्पष्टता से बताया गया है, और अब हर एक सरकारी स्थान पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। खास तौर पे इस समय तक जो गर्भवती महिलाएं थी उनकी जांच हो रही थी, लेकिन अब लगातार, जैसे कि पहले करीब 21 करोड़ लोगों की अभी तक जांच हो चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे ये जांच पूरी करनी है जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो हेपेटाइटिस बी या सी से प्रभावित है जल्दी बीमारी अधिक बढ़ने से पहले पकड़ा जा सके, क्योंकि आज इनका इलाज उपलब्ध है। एंटीवायरल ड्रग्स हमारे देश में उपलब्ध हैं, यहीं पे उनका निर्माण होता है, हमें बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता, और वो बहुत ही प्रभावी दवाई है, तो इलाज किया जा सकता है, और जिससे कि सिरोसिस से बचा जा सके और जिससे जो
1: जी
0: कार्सिनोमा कैंसर है लिवर
1: जी
0: का वो उससे बचा जा सके।
1: तो जैसा कि पहले उत्तर में आपने बताया कि किस प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं और किस प्रकार की चुनौतियां लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, तो उसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है कि हेपेटाइटिस के, जैसे हमें पता है कि 5 प्रकार बताए जाते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, इनमें से भारत के लिए सबसे बड़ी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है वो कौन से प्रकार के हेपेटाइटिस से होती है और क्यों?
0: हमारी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के हिसाब से इसमें से चार, हेपेटाइटिस डी इतना कॉमन नहीं है। मैंने आपको बताया कि ए और ई पानी के दूषित होने से या भोजन के दूषित होने से होता है। जिस तरीके से डायरिया या दस्त की बीमारी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से हेपेटाइटिस ए और ई भी हो सकता है। और जैसे ही हमारा वातावरण में स्वच्छता आती है, चाहे वो पानी की है, भोजन की है, और जैसे कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम हुआ, हर घर जल वाला कार्यक्रम आ रहा है, उसकी वजह से सचमुच इन चीजों में बहुत कमी

0: आई है कुछ साल पहले तक, यानी मैं कहूंगा 10-15 साल पहले तक, हर थोड़े दिन में पता चलता है देश के किसी हिस्से में हेपेटाइटिस ई का खास तौर पे आउटब्रेक्स या एपिडेमिक होता था। और ये जो है इसकी वजह से बहुत सीवियर बीमारी होती है, और खास तौर पे अगर गर्भवती महिलाओं में हेपेटाइटिस ई हो जाए तो मृत्यु की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये इन दोनों के लिए तो सफाई का है। हेपेटाइटिस बी और सी का होने का जो तरीका वो है, बी जो है माँ से बच्चे, अगर गर्भवती महिला में हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे में होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसी तरीके से जीवन के पहले 5 सालों में अगर एक दूषित सिरिंज के द्वारा इंजेक्शन दिया जाता है या कोई ब्लड ब्लड दिया जाता है और उसके अंदर हेपेटाइटिस बी है, तो उसमें से 70 से 95% संभावना होती है कि हेपेटाइटिस बी की बीमारी उस बच्चे में हो जाएगी और वो फिर वायरस बाहर निकलता नहीं। हेपेटाइटिस सी जो है दूषित इंजेक्शन या ब्लड सैंपल से होता है खासतौर पर, ज्यादातर एक आम समझ के लिए ये जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ध्यान करना है, एक तरफ तो हमें खाने की और पीने की सफाई रखनी है और उसमें खास ध्यान रखना है, दूसरी तरफ जब भी इंजेक्शन लग रहा हो तो हमें देखना है कि नई इंजेक्शन और नई नीडल का इस्तेमाल होना चाहिए हमारे लिए। दूसरी उतनी महत्वपूर्ण बात है कि इंजेक्शन तभी लगाया जाए जब अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये देखा गया है विभिन्न अनुसंधानों के द्वारा, हमारे द्वारा किया गया, कि लगभग 60 से 75% समय हम जब प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं तो इंजेक्शन लगाया जाता है जिसकी जरूरत नहीं हो बिना, क्योंकि आजकल ओरल दवाइयों से पूरा लाभ वैसे ही मिल जाता है। तो इंजेक्शन की कमी होनी चाहिए, इंजेक्शन कम से कम हो लगने चाहिए, और जब इंजेक्शन लगाना पड़े तो नए इंजेक्शन और सिरिंज होने चाहिए। और ब्लड सैंपल जब भी चढ़ाया जाए, जब ब्लड किसी को चढ़ाने की जरूरत है तो उसमें हेपेटाइटिस बी और सी की जांच करी होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि मेरे श्रोता इस बात को अपने डॉक्टर से या अपने चिकित्सा कर्मी से पूछे कि भैया इसमें हेपेटाइटिस बी सी और एचआईवी की जांच हो गई है कि नहीं हो गई। अब गर्भवती महिलाओं में आजकल जो है प्रसव से पूर्व जो जांच होती है उसमें हेपेटाइटिस बी की पूरी जांच की जाती है, और अगर हेपेटाइटिस बी माँ को है तो उसका इलाज तो अलग से करना होता है जब प्रसव हो जाता है, लेकिन प्रसव के 24 घंटे के अंदर ही अगर बच्चे को, जो नवजात शिशु है, उसको हेपेटाइटिस बी का टीका लगा दिया जाए तो बच्चे में हेपेटाइटिस बी का संक्रमण बच जाता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 5 साल से कम अगर हेपेटाइटिस बी का संक्रमण किसी बच्चे में हो, खास तौर पे नवजात शिशु में और पहले साल में, तो लगभग 95% संभावना है कि वो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को पता है कि माँ को हेपेटाइटिस बी है तो वो उसको मैं टीका लगा दूं तो फिर टीके से बचाव हो जाए।
1: जी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो सरकार ने शुरू किया था, इससे आम लोगों को कितना फायदा मिला है और कैसे उनके लिए एक सुविधाजनक इलाज सरकार ने दिलवाया है?
0: स्वच्छ भारत की वजह से हेपेटाइटिस ए और ई में एक बहुत शार्प गिरावट आई है। अब हमें हेपेटाइटिस ए और ई के केसेस या आउटब्रेक्स या एपिडेमिक महामारी के तौर पे बहुत ही कम दिखाई देते हैं, और पिछले कई सालों में हमने नहीं सुना है कि बहुत बड़ा कोई आउटब्रेक हुआ। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए क्योंकि गर्भवती महिलाओं में जांच हो रही है, और इसके अलावा जब नवजात शिशु है, आज की डेट में लगभग 90% से ऊपर प्रसव जो है स्वास्थ्य केंद्रों पे होते हैं, तो उसी समय नवजात शिशु को हेपेटाइटिस बी का टीका लगा दिया जाता है। तो इस टीका लगाने से अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है भी तो हमारे बच्चे को उससे बचाया जा सकता है और बच जाता है। और इसका फायदा ये हुआ है कि हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाने से समय के साथ जहां हमारे हेपेटाइटिस बी और सी के 2 से 3% लोग संक्रमित थे, वो अब 1% से कम, लगभग 0.85 और 0.9% जो है वो प्रभावित होते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है वो लगभग 0.3%, यानी कि अगर मैं कहूं कि 1,000 में 3 बच्चे जो है, 3 व्यक्ति हुए हैं हेपेटाइटिस सी, और ये खास तौर पे संक्रमित इंजेक्शन या ब्लड सैंपल और खास तौर पे इंजेक्शन की वजह से होता है, तभी मैंने कहा कि इंजेक्शन। तो अब ये जो कार्यक्रम हुआ है, और ये कार्यक्रम हर एक सरकारी चिकित्सा संस्था है, चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, पीएच

0: आईसीएस, सीएससी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, इन सभी में हेपेटाइटिस बी और सी की जांच उपलब्ध है आज की डेट में। वहीं हाथ के हाथ आपकी जांच हो जाती है, और उससे एक बार जांच हो जाए तो उसके हिसाब से फिर ध्यान किया जाता है, और साथ में इंजेक्शन के बारे में विशेष ध्यान दिया जाता है।
1: हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका समय पर पहचान और इलाज संभव है। सरकार मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज, टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के माध्यम से 2030 तक हेपेटाइटिस उन्मूलन के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जन जागरूकता, समय पर जांच और लोगों की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। डॉक्टर एनके अरोड़ा, आपका हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए भारत के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं ये गीत फिल्म जोधा अकबर से। जावेद अली की आवाज़, जावेद अख्तर के लिखे बोल और संगीत है AR रहमान का।

श्रोताओं, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला और साधना सरगम, साथ ही शंकर महादेवन की आवाज़ों में सुनिए समीर का लिखा गीत। फिल्म है सलाम-ए-इश्क। इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, फिल्म सलाम में इश्क के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
3: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा

0: रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
2: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
2: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
5: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
6: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
6: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
2: इस वर्ष जून

0: उन महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
1: राज्यों की यात्राओं के दौरान

0: 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
1: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
0: भुवनेश्वर। केरल के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था, लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब

0: stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on NEET paper leak issue. Maharashtra, Bihar and Assam orders withdrawal of cases against students. 20 people killed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir in firing on protesters. India terms so-called assembly polls in POJK a cosmetic exercise to camouflage illegal occupation. Industrial output growth hits 23-month high of 7.3% in June. Odisha faces flood fury as heavy rains swell major rivers. Red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Vidarbh region for next 2 days. At ISSF Shooting World Cup, Indian pair of Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillon clinch bronze medal in 10-meter air rifle mixed team event. That is all in the news at 9. Good night.
1: लोकसभा में उस बिल पर बहस जारी है जिसमें पेपर लीक मामले में सख्त सजाएं और फास्ट ट्रैक अदालतों के क्याम की तजवीज़ है। हुकूमत ने कहा है कि ये नया कानून तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ की खातिर उसके अज़्म की अक्कासी करता है, जबकि अपोजिशन ने तालीमी निज़ाम में वसी तर इस्लाहात पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए कम उम्र तलबा की रिहाई का हुक्म दिया है। महाराष्ट्र, बिहार और आसाम की हुकूमतों ने तलबा के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर फायरिंग के दौरान 20 अफराद हलाक हो गए। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद असम्बली इंतखाबात उसके गैर कानूनी कब्जे को छुपाने के लिए महज एक दिखावा है। जून के महीने में सनअती पैदावार की शरह तरक्की पिछले 23 महीनों की बुलंदतरीन

जारी किया गया है। आईएसएसएफ निशानेबाजी वर्ल्ड कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिस टीम मुकाबले में कांस्य का तमगा जीता।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि नीट पेपर लीक के खिलाफ हालिया मुलगीर एहतजाज के दौरान तलबा और पुलिस अहलकारों के जख्मी होने के इल्जाम की मुकम्मल मुनसिफाना और गैर जानबदाराना तहकीकत जरूरी हैं। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए ऐसे कम उम्र तलबा जिनका कोई साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है उन्हें रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्काम को हिदायत दी कि एहतजाज से मुतालिक तमाम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल शवाहिद महफूज रखे जाएं। चीफ जस्टिस सूर्याकांत की सरबराही में तीन रुकनी बेंच उन दरखास्तों की समाअत कर रही थी जिनमें एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। अदालत आलिया ने कहा कि तहकीकात में उन 200 से ज्यादा जख्मी पुलिस अहलकारों के अहल खाना के खदशात को भी मलहूज रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम रियासतों को जहां एहतजाज हुए हिदायत दी कि वो एहतजाज से मुतालिक सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी कैमरों की फुटेज, वायरलेस मुआसलाती रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग्स और दिगर तमाम डिजिटल शवाहिद महफूज रखें। अदालत आलिया ने यह भी हुक्म दिया कि एहतजाज करने वाले तलबा से मुतालिक इकट्ठा किया गया तमाम डिजिटल डेटा महफूज रखा जाए ताहम इसे अवामी सतह पर

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

आकाशवाणी भोपाल की जानिब से हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम कहकशां को लेकर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त जावेद। इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। सामईन, आज के कहकशां प्रोग्राम में आबशार गज़ल सीरीज़ के तहत हम बात करेंगे ज़हनी सेहत की अहमियत के बारे में, और साथ ही लुत्फ़अंदोज़ होंगे मखमली आवाज़ों वाले गुलूकारों की गज़लों से। दोस्तों, मेंटल हेल्थ यानी ज़हनी सेहत से मुराद किसी शख्स की जज्बाती, नफ्सियाती और समाजी बहबूद है। ये इस बात पर असर अंदाज होता है कि एक शख्स किस तरह सोचता है, महसूस करता है और बर्ताव करता है, और ये इस बात का तायुन करने में भी किरदार अदा करता है कि कोई शख्स किस तरह तनाव का मुकाबला करता है, दूसरों से ताल्लुक़ रखता है और इंतखाब करता है। मज़बूत ज़हनी सेहत किसी शख्स की अपनी सलाहियत को पूरा करने, नतीजा खेज़ काम करने और अपने समाज में बामानी शराकत करने की सलाहियत से नुमाया होती है। दोस्तों, दिमागी सेहत एक पेचीदा और मुतहर्रिक तसव्वुर है, और ये जेनेटिक्स, माहौल, ज़िंदगी के वाक़ियात और ज़ाती तजुर्बात समेत मुतअद्दिद अवामिल से मुतासिर हो सकता है। ये समझना अहम है कि ज़हनी सेहत भी जिस्मानी सेहत की तरह ही ज़रूरी है, और अगर आप या आपके जानने वाले किसी ज़हनी सेहत की हालत की अलामत का सामना कर रहे हैं तो मदद लेना ज़रूरी है। मुनासिब इलाज और मदद के साथ दिमागी सेहत की दुश्वारियों से सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना मुमकिन है। सामईन, अच्छी दिमागी सेहत किसी शख्स की मजमूई जज्बाती बहबूद और खुशी में हिस्सा अदा करती है। ये एक शख्स को मुस्बत जज्बात का तजर्बा करने और मुश्किल या दबाव वाले हालात से निमटने में मदद करता है। दोस्तों, जिस्मानी सेहत और दिमागी सेहत का गहरा ताल्लुक है। दायमी तनाव और दीगर ज़हनी सेहत के अमराज जिस्मानी सेहत के मसाइल जैसे सरदर्द, हाई ब्लड प्रेशर और कमज़ोर इम्यून सिस्टम का बाइस बन सकती हैं। सामईन, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा प्रोग्राम आबशार गज़ल गज़लों से सजा होता है, तो आइए सुनते हैं अपने प्रोग्राम की पहली पेशकश में ये खूबसूरत गज़ल। समात फरमाइए।

दोस्तों, अभी आप गुलूकार सुशील कुमार की जादुई आवाज़ में गज़ल समात फरमा रहे थे। सामईन, हमारी बातचीत का मौजू था ज़हनी सेहत की अहमियत के बारे में। ज़हनी सेहत के मसाइल के कामयाब इलाज के लिए इब्तदाई मदाखलत बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों को दिमागी बीमारी की अलामात का इल्म हो तो वो जल्द मदद ले सकते हैं, जिससे उनकी सेहतयाब होने के इम्कानात बेहतर हो सकते हैं। दोस्तों, दिमागी सेहत मजमूई सेहत का एक अहम पहलू है और ज़हनी बीमारी किसी शख्स की ज़िंदगी पर नुमाया असर डाल सकती है। दिमागी सेहत के बारे में बेदारी पैदा करने से लोग अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखने की अहमियत को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और अपनी सेहत के बारे में बाखबर फ़ैसले कर सकते हैं। दिमागी सेहत के बारे में बेदारी पैदा करने से दिमागी सेहत के मसाइल को हल किया जा सकता है और इससे लोगों को मदद और तफहीम फराहम करने का इम्कान ज़्यादा होता है। जो ज़हनी बीमारी के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, मजमूई तौर पर ज़हनी सेहत के बारे में बेदारी में इजाफ़ा अफराद और कम्युनिटीज़ की ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, अब वक्त है हमारे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश का, जिसमें हम सुनेंगे गुलूकार सुशील कुमार की आवाज़ में एक और ख़ूबसूरत गज़ल। समात फरमाइए।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशां। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म पारसमणि का ये गीत। लता मंगेशकर और कमल बरोट की आवाज़ें हैं। गीत के बोल लिखे हैं असद भोपाली ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, फिल्म असली नकली से सुनिए हसरत जयपुरी का लिखा यह गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

हरे रामा हरे कृष्णा, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की थी आरडी बर्मन ने और आवाज़ें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म शक्ति से। आनंद बख्शी के बोल, आरडी बर्मन का संगीत और आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म लोफर से। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और इस गीत को गाया लता मंगेशकर ने। श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवाते हैं। ये गीत हमने लिया है फिल्म जीने की राह से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, आनंद बख्शी की शब्द रचना और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, फिल्म अनाड़ी का गीत सुनिए, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के लिखे बोल और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। श्रोताओं, इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं पंडित आसकरण शर्मा का ख्याल गायन। राग है यमन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित आसकरण शर्मा का ख्याल गायन, राग था यमन।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही DTH की ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन और वेव्स OTT ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:51 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।